0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। तद अनुसार 20 सितंबर 2026 आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।
2: एक समय की बात है, मिडास नाम का एक राजा था। राजा ने एक प्रकृति के देवता सैटायर के प्रति अपना दया का भाव दिखाया। इस नेक कार्य के फलस्वरूप एक अन्य देवता डायोनिसस ने उसे वरदान दिया। राजा मिडास चाहता था कि उसका स्पर्श सोने का हो जाए। जब डायोनिसस ने उसे वरदान की कमियों के बारे में चेतावनी दी, तब भी राजा अपनी इच्छा पर अड़ा रहा। आखिरकार राजा मिडास को उसका अपना इच्छित वरदान मिल ही गया और वह अपनी नई शक्तियों को लेकर बहुत उत्साहित था। वरदान के बाद राजा मिडास जिन वस्तुओं को छूता, वह उन्हें सोने में बदल देता था। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। एक बार राजा मिडास को भूख लगी तो उसने अपने हाथों से खाना खाने की कोशिश की, लेकिन वह भी सोने में बदल गया और अंततः मिडास भूख से कराह उठा और सोचने लगा कि इस तरह तो वह भूखा ही मर जाएगा। राजा को दुखी देखकर उसकी बेटी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वह जैसे ही अपने पिता को गले लगाने के लिए उनके पास आई तो वह भी सोने में बदल गई और राजा यह सोचकर रोने लगा कि यह वरदान उसके लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गया है। यह छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि अत्यधिक लालच कभी कभी गहरे पतन का कारण बनता है।
1: जीवन सौरभ।
0: नवे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। सुबह 8 बजे महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आज केंद्रित होगा श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर। सुबह 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम का विषय होगा पौराणिक कथाओं का महत्व। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकार। सुबह 9 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय होगा दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। इस कार्यक्रम में जानकारी देंगे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी और इनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी फराज। सुबह 9:30 पर हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम में आज का विषय होगा नेवी और एयरफोर्स की कार्यप्रणाली। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी अदिति गौड़। सुबह 10 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम में आज का विषय है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे दीपक नेमा और भगवती सक्सेना। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के जीवन पर केंद्रित होगा। सुबह 11 बजे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम और 11:30 पर कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे कार्यक्रम काव्य गुंजन के अंतर्गत। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 23 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता बृहस्पति, छंद जगती व त्रिष्टु।
1: त्वया वयमुत्तमं धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणा ससनिना युजा मानो दुशंसो अभिदिप्सुरीशत प्र सुशंसा मतिभिस्ता ऋषि महि। हे वाणी के स्वामी बृहस्पति देव, आप पवित्र आचारवान तथा सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण करने वाले हैं। हम आपसे जुड़कर आयुष्य प्राप्त करें। दुराचारी तथा ठगने वाला हमारा अधिपति न हो। उत्तम बुद्धि के सहारे प्रशंसनीय रहते हुए हम संकटों को पार करें। अनानुदो वृषभो जग्मी राहवम निष्टप्ता शत्रुम प्रतनासु सा सहि असि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य चिदिम्मिता वीडु हर्षिणः। हे बृहस्पति देव, आपके समान दान दाता दूसरा कोई नहीं है। आप बलशाली, युद्ध में जाने वाले योद्धा, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, युद्ध में शत्रुओं को पराजित करने वाले, ऋण मुक्ति करने वाले, पराक्रम से युक्त, शत्रुओं का शमन करने वाले तथा न्यायशील हैं। अदेवेन मनसा यो ऋषण्यति शासामुग्रो मन्यमानो जिघांसति बृहस्पते मा प्रणक्तस्य नो वधो निकर्म मन्युम दुरेवस्य शर्धतः। हे बृहस्पति देव, जो आसुरी वृत्ति के कारण हमारे लिए दुखदायी हैं, निर्दयी हैं, अत्यंत अहंकारी रूप में स्तोताओं का हनन करना चाहते हैं, उनके हथियार हमें स्पर्श न करें। कुमार्गगामी बलवान व्यक्ति के क्रोध को हम नष्ट करें। भरेषु हव्यो नमसोप सद्यो गंता वाजेशु सनिता धनम धनम विश्वा इदरियो अभिदिप्सवो मृधो बृहस्पतिर्वि ववरहा रथां इव। युद्ध में सहायता के लिए आदर पूर्वक बुलाने योग्य बृहस्पति देव सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, वे स्तुत्य हैं। शत्रु सेनाओं को नष्ट करने की कामना वाले बृहस्पति देव शत्रु के रथों के समान ही हिंसक शत्रुओं का संहार करें। तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदे दधिरे दृष्टवीर्यम् आविस्तकृष्व यदसत्त उक्थ्यम् बृहस्पते वि परिरापो अर्दय। हे बृहस्पति देव, आपके दृष्टिगोचर होने वाले पराक्रम की जो निंदा करते हैं, आप उन दुष्ट प्रकृति वालों को अपने तेजस्वी ताप से पीड़ित करें। आपका पराक्रम सराहनीय है, उसे प्रकट करके चारों ओर व्याप्त शत्रुओं का संहार करें। बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्। हे ख्याति प्राप्त धर्मज्ञ बृहस्पति देव, ज्ञानी जनों द्वारा सम्माननीय मनुष्यों में तेजस्वी कर्म के रूप में प्रतिफलित होने वाले देदीप्यमान सर्वोत्तम तथा अलौकिक ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। मानह स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहस्पदे निरामिणो रिपवोन्नेषु जाघृधुः आ देवाना मोहते विव्रयो हृदि बृहस्पते न परह साम्नो विदुः। हे बृहस्पति देव, जो द्रोही शत्रु आक्रमण करके अन्नादि पदार्थों की कामना करते हैं, देवगणों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं तथा श्रेष्ठ सुखकारी वचन भी नहीं जानते, ऐसे चोर पुरुषों से हमें भय न हो। विश्वेभ्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टा जनत साम्नः साम्नः कविः स ऋण चिद्रणया ब्रह्मणस्पतिर्द्रुहो हन्ता मह ऋतस्य धर्तरी। हे ब्रह्मणस्पति देव, प्रजापति ने आपको संपूर्ण भुवनों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है, अतः आप प्रत्येक साम के ज्ञाता हैं। महान यज्ञ के धारण करता स्तोताओं को ऋण से मुक्ति दिलाकर द्रोहकारियों का विनाश करते हैं। तव श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवाम गोत्र मुदस्रजो यदंगिरह इंद्रेण युजा तमसा परिवृतम बृहस्पते निरपामौब्जो अर्णवम्। हे अंगिरावंशी बृहस्पति देव, जब गौओं को पर्वतों ने छिपाया था और आपने उन गौओं को बाहर निकालकर आश्रय प्रदान किया था, तब इंद्रदेव की मदद से वृत्र द्वारा रोके गए जल को बरसाने के लिए आपने प्रेरित किया था। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयम् च जिन्व विश्वम् तद्भद्रम् यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे ब्रह्मणस्पति देव, आप संपूर्ण जगत के नियंता हैं, आप इस सूक्त के ज्ञाता हैं। देवगणों का संरक्षण जिन्हें प्राप्त होता है, उनका सब प्रकार से कल्याण होता है। आप हमारी संतति को परिपुष्ट बनाएं, जिससे हम यज्ञ में सुसंतति सहित आपकी महिमा का गायन कर सकें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 23 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

प्रार्थना का आशय ईश्वर से कुछ मांगना ही नहीं है। प्रार्थना का अर्थ होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता उस असीम प्रेम के लिए जो ईश्वर हमारे बिना जाने बिना मांगे हर क्षण हम पर उड़ेलता है। प्रार्थना का एक बहुत कारगर माध्यम है संगीत। आइए ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता संगीत के माध्यम से व्यक्त करें।

सुंदर होने का अर्थ केवल सुंदर दिखने से नहीं है। इसका आशय एक सुंदर हृदय और सुंदर नजरिए से है। अपने जीने की कला को सौंदर्य की दृष्टि प्रदान करने के लिए ध्यान, भजन और उपासना बहुत कारगर हैं।

ईश्वर को खुश करने या नाराज करने जैसी कोई बात नहीं होती। बात केवल यही होती है कि हमें अपने आराध्य के साथ एकाकार होने का भाव अनुभव होना चाहिए, और ये अनुभव संगीत के माध्यम से अधिक जीवंत हो जाता है।

अच्छे और बुरे अनुभवों को आकर गुजर जाने दीजिए। उन्हें होने से रोकने की कोशिश करना गलत स्थान पर अपनी ऊर्जा व्यय करना है। ये हमारे अपने ऊपर है कि अनुभवों से सीख लेकर हम अधिक परिपक्व बने या अपनी भूल को फिर से दोहराएं। जीवन के प्रति यही परिपक्वता, यही अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करती है ईश्वर के प्रति विश्वास और संगीत।

ईश्वर के प्रति अपने मन में कृतज्ञता का भाव नहीं रखना बड़े अफसोस की बात है। कृतज्ञता का विचार मात्र ही मन को पूर्णता के अनुभव से भर देता है। श्रद्धा, कृतज्ञता और पूर्णता के अनुभव को संगीत के माध्यम से अधिक जीवंतता से साझा किया जा सकता है।

प्रसिद्ध दार्शनिक खलील जिब्रान ने कहा है कि किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग को समझने के लिए इस बात को ना देखें कि उसने अभी तक क्या प्राप्त किया है, बल्कि इस बात को देखें कि वो क्या अभिलाषा रखता है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। एक दिया हजारों दियों को रोशन कर सकता है और उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। ठीक वैसे ही खुशी होती है, इसे जितना बांटेंगे उतना ही यह बढ़ती जाएगी।

जिसे अंधेरे डार्क रूम में ही एक खूबसूरत रंगीन और चमकदार तस्वीर तैयार होती है, उसी तरह अगर आपके जीवन में भी अंधेरे से भरा कोई पल आया है तो यकीन जानिए कि ऊपर वाला आपके सुनहरे भविष्य की तस्वीर बना रहा है। अपना विश्वास कायम रखिए,

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। आज का कार्यक्रम श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर केंद्रित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। यदि ज्ञान दृष्टि से चिंतन किया जाए तो विवेक के द्वारा रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः संप्रदाय को धर्म की मान्यता देना विवेक की दृष्टि से सत्य नहीं हो सकता है। अविवेक से ही अंधश्रद्धा का जन्म होता है। इसी अंधश्रद्धा के कारण ही लोग भ्रमित होकर मानव से मानव के बीच में भेद उत्पन्न करते रहते हैं और यही भेद समाज को विभाजित करने में सहायक सिद्ध होता है। यही अंधश्रद्धा समाज में कुरीतियों को जन्म देकर पूरी मानवता को अज्ञान के अंधकार में ढकेलने में सफलता प्राप्त करती है। समाज को ऐसा चिंतन देकर एकता के सूत्र में बांधने वाले और मानवता को अंधकार की गर्त से निकलने का रास्ता दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ थे श्री राम शर्मा आचार्य। उनका जन्म आगरा जनपद के आंवलखेड़ा गांव में 20 सितंबर सन 1911 को हुआ था। उनका बचपन गांव में ही बीता। उनके पिता पंडित रूप किशोर जी शर्मा राजघरानों में राजपुरोहिती का काम करते थे। वे उद्भट विद्वान और भगवत कथाकार थे। श्रीराम शर्मा के मन में बचपन से ही मानव मात्र के लिए अपार करुणा का भाव था और व्यक्तिगत साधना की ओर उनका गहरा झुकाव भी था। गांव के छोटे छोटे बच्चों को अमराइयों के नीचे बिठाकर वे स्कूली शिक्षा भी देते और आध्यात्मिक शिक्षा भी। उनके भीतर एक छटपटाहट थी जिसके चलते वे हिमालय की ओर भाग निकलते और जब पकड़े जाते तो कहते, हिमालय ही मेरा घर है, मैं वहीं जा रहा था। ये वो समय था जब समाज जाति, धर्म और संप्रदायों में बुरी तरह बंटा हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनके मन में जाति पाति का कोई भेद नहीं था। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने समाज सुधार की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं औपचारिक शिक्षा बहुत कम ली थी, लेकिन उनकी आंतरिक चेतना पूर्णतः जागृत थी। वो हाट बाजारों में जाते और लोगों को सामान्य स्वास्थ्य की शिक्षा देते, पशुधन कैसे सुरक्षित रखें ये बताते। लोगों के जीवन से जुड़कर वे उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते थे। महिलाओं और बेरोजगारों के लिए उन्होंने गांव में ही एक बुनता घर स्थापित किया ताकि वो हाथ से कपड़े बुनकर स्वावलंबी बन सकें। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही सन 1926 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी में उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और इस तरह उन्हें आत्मबोध होना आरंभ हुआ। उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगी। इस तरह उनकी चेतना युग निर्माण मिशन से जाकर जुड़ गई।

एक तरफ श्रीराम शर्मा की आध्यात्मिक यात्रा जारी थी, वो समाज सुधार और युग निर्माण के मिशन से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर भारत की पराधीनता उन्हें कचोटती रहती। उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता समझ रही थी और अचानक एक दिन उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी। युग धर्म की महत्ता और समय की पुकार देख सुनकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इस आवाज में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह काम करने का संदेश छिपा हुआ था। गांधी जी ने उन दिनों असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया था। स्वाधीनता संग्राम से जुड़ने की घटना को उन्होंने कुछ इस तरह व्यक्त किया, मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है, मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखवा दिया। अब साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों से थी, लंबी सजाएं और काला पानी होने की भी। ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही नहीं बने, घर वाले उसकी पूरी रोकथाम कर सकें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होते ही मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी न बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए, जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि से ये आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण तक आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। किसी ने उन्हें समझा दिया कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वो मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम करा दें। भाइयों ने भी कहा, घर से कोई रिश्ता न रहेगा, उसमें प्रवेश न मिलेगा तुम्हें। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। इस संदर्भ में प्रहलाद का चित्र आंखों के सामने तैरने लगा, ध्रुव की कहानी मस्तिष्क को घेरने लगी, पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। अनगिनत वीर बलिदानियों की, संतों की, सुधारकों की, शहीदों की कहानियां सामने तैरने लगी। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेकों विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता हुआ लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। इस तरह उनका सन 1927 से 1933 तक का समय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता। वे भूमिगत होकर काम करते रहे और कई बार जेल गए। आसनसोल जेल में ही वे नेहरू जी की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफी किदवई, पंडित मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी जैसी हस्तियों के साथ रहे। आजादी के महायज्ञ में वो अपनी आहुति लगातार देते रहे।

ये वो समय था जब भारत की आत्मा आजादी के लिए छटपटा रही थी। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के फैसले ने जन आक्रोश को भड़का दिया था। उसके विरोध में वे भी शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान वे ब्रिटिश शासन के समक्ष झुके नहीं। अंग्रेज सिपाही डंडों से उन्हें मारते रहे। वे बेहोश हो गए, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने दांतों से झंडे को पकड़ रखा था। बेहोशी की अवस्था में जब वो चिकित्सक के पास ले जाए गए, तब उनके भिंचे हुए दांतों के नीचे से झंडे का टुकड़ा निकला। उनकी सहन शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और उन्हें आजादी के मतवाले उन्मत्त श्री राम मत्त का नाम मिला। आज भी आगरा के उनके साथी मत्त के नाम से ही उन्हें जानते हैं। लगानबंदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए भी उन्होंने पूरे आगरा प्रांत का दौरा किया था। सारे आंकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को उन्होंने सौंपे और पंत जी ने उन्हें बापू के सामने पेश किया। फिर गांधी जी ने अपनी प्रशस्ति के साथ ये सारे आंकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजा। परिणाम ये हुआ कि संयुक्त प्रांत में लगान माफी के आदेश पारित हुए। सन 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर आरंभ हुआ, जब पौंडीचेरी में वे श्री अरविंद से, शांति निकेतन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर से और साबरमती आश्रम में वे बापू से मिलने गए। इन सब के निर्देश पर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। आगरा से प्रकाशित सैनिक समाचार पत्र के संपादक श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने उन्हें कार्यवाहक संपादक बनाया। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रभाव से वे गांधी जी के अत्यंत निकट आ गए। साथ ही आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन और कैलाशनाथ काटजू से उनके घनिष्ठ संबंध बन गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे तत्कालीन संयुक्त प्रांत के प्रभारी नेता नियुक्त हुए। मैनपुरी षड्यंत्र केस में उनका सहयोग था और आगरा षड्यंत्र केस के वे प्रमुख अभियुक्त थे। वे अपने एक पुत्र, बेटी और भाई के साथ पकड़े गए। सन 1945 में वो रिहा हुए। इस जेल प्रवास के दौरान ही उनके तीन पुत्रों की मृत्यु हो गई। 1948 के बाद उन्होंने सघन रूप से लेखन का कार्य किया और कई किताबें लिखीं। इन सब के बीच 4 घंटे नियमित स्वाध्याय का उनका क्रम कभी नहीं टूटा। जीवन के उत्तरार्ध में ग्लूकोमा के कारण उनके नेत्रों की ज्योति चली गई। 8 से 10 वर्ष इसी अवस्था में उन्होंने 5 पुस्तकें बोलकर लिखवाई। उन्होंने वेदों का सरल भाषा में अनुवाद करके उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वे ताउम्र जीवन पर अपने विचारों की रोशनी से लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहे और मानव मात्र के कल्याण में डूबे हुए 2 जून सन 1990 को उस परम ज्योति में विलीन हो गए। उनका कहना था, विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचार आदमी को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। नमन ऐसी दिव्य विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। वतन का राग कार्यक्रम में आज हमने श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुना।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है पौराणिक कथाओं का महत्व। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकार।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है बच्चों के लिए पौराणिक कथाओं का महत्व।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपका फेवरेट कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में हम बात करते हैं कि आजकल आपके साथ साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उस दिन को, उस सप्ताह को, उस महीने को और आपकी जीवन के हर दिन को कैसे सुंदर बनाया जाए, क्या बातें की जाएं जिससे आपका जीवन उस खूबसूरत फुलवारी की तरह महकने लगे जहाँ तरह तरह के फूल होते हैं। और बच्चों जब हम फुलवारी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि जहाँ फूल होते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ फूल नहीं होते, कुछ कांटे भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े पौधे वृक्ष भी होते हैं और कुछ नन्ही नन्ही सी भी हम देखते हैं क्यारी में पत्तियाँ उगाती हैं, है ना। एक तरफ बड़ी बड़ी लताएँ दीवार छूने को तैयार रहती हैं और दूसरी तरफ छोटी छोटी सी घास होती है जिसके ऊपर से हम सब चलकर जाते हैं। फुलवारी और जीवन एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे है जैसे जब हम आईने में खुद का चेहरा देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अरे मैं ऐसा दिखता हूँ। तो बस जीवन में आपका जीवन बिल्कुल फुलवारी की तरह है। कभी जैसे बहुत तेज बारिश आ जाती है तो कुछ छोटे पौधे एकदम झुक जाते हैं और कुछ तने खड़े रहते हैं, है ना। तो जीवन में भी ऐसा ही है, तरह तरह की बातें हैं, अच्छे दोस्त हैं, कई गलत सलाह देने वाले भी हैं। बच्चों ऐसे ही फुलवारी की तरह कुछ बहुत खूबसूरत फूलों जैसे दिन हैं और कुछ कांटे की तरह भी दिन हैं, है ना। जब आपको वो चुभने वाले कांटों की तरह कोई दिन लगता है ना, जैसे कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया, कोई छोटी सी भी ऐसी बात होगी, मान लीजिए कि आपकी किसी अच्छे दोस्त से कुट्टी हो गई, कुट्टी तो समझते होंगे, है ना, मतलब थोड़ी बहस हो गई, थोड़ी नाराजगी हो गई और आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, तब भी तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो उन सब दिनों में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमको संभाले रखती हैं? बच्चों सबसे अच्छी चीज पता है क्या है इन सब दिनों में? सबसे अच्छी बात होती है आपके भीतर का धैर्य, आपकी समझदारी, आपकी अनुशासन प्रियता, आपकी शालीनता, आपकी भाषा, आपका बात करने का तरीका। ये अच्छे से अच्छे दिनों को और अच्छा बना देता है और इनफैक्ट बुरे दिनों को भी थोड़ा बेहतर बना देता है। अब लेकिन ये सब हम सीखें कैसे? उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अच्छी कहानियाँ पढ़ें, अपने बुजुर्गों के साथ बैठें, उनसे उनके अच्छे बुरे दिनों के जीवन के अनुभव लें, है ना। और बच्चों एक और चीज़ होती है, बहुत हमारी संस्कृति में आपने भी सुना होगा, दादी नानियाँ अक्सर कभी राम की कहानियाँ सुनाती हैं, कभी कृष्ण की सुनाती हैं, कभी बहुत पौराणिक कथाएँ हमें सुनने को मिलती हैं जब हम जाते हैं कहीं बुजुर्गों के बीच बैठते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ बैठते हैं। तो वो कहानी, वो कथाएँ क्यों सुनाई जाती हैं, कभी सोचा है आपने? कुछ बच्चे तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना, और कुछ बच्चे एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि अरे बोरियत हो रही है। पर नहीं बच्चों, आपको ऐसी कहानी, ऐसी कथाएं ज़रूर सुननी है, क्योंकि यही वो कहानियां और यही वो कथाएं हैं जो आपको कठिन दिनों में भी संबल देती हैं और बेहतर चरित्र और बेहतर नागरिक बनने की दिशा में भी ये कहानी, ये कथाएँ बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो चलिए आज हम चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहाँ मिट्टी की खुशबू भी है, गायों की घंटियाँ भी हैं, जमुना का किनारा है, गोकुल की गलियाँ हैं, दोस्तों की टोली है और एक नन्हा सा बालक है जिसकी शरारतों से पूरा गोकुल महकता और चहकता रहता है। तो उसी पर अपना प्यार भी लुटाता है और उसी पे नाराजगी भी जताता है। अब आपको याद आ गया होगा कि पिछली बाल सभा में हमने श्री कृष्ण जी की कुछ बाल लीलाओं की बात की थी, उनकी शरारतों की, उनकी चंचलता की, उनके बचपन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग हमने आपको बताए थे। फिर से आज वहीं लौट रहे हैं और आज की बाल सभा में केवल कहानियाँ नहीं होंगी, हम कहानियों को डीकोड भी करेंगे बच्चों, है ना, क्योंकि हर कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बच्चों के बाल मन को समझ में नहीं आता लेकिन समझाना पड़ता है। तो चलिए, कंस अपने दानवी

0: कृष्ण ने अकस्मात ही उस बछड़े को पिछली टांगों से पकड़कर इस प्रकार फेंका कि वो एक कटीले तने वाले पेड़ से टकराकर नीचे आ गया और निष्प्राण हो गया। पूतना का भाई वकासुर भी बदला लेने एक विशाल बगुला बनकर आया और उसने कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़कर उठा लिया। कृष्ण तुरंत अपने शरीर का ताप बढ़ाकर आग का गोला बन गए। बगुले ने कृष्ण को चोंच से छोड़ दिया तो उन्होंने उसकी चोंच चीर कर उसे यमलोक भेजा। तो बच्चों, ये जो कहानी थी, अब अगर कोई बच्चा आप में से ये कहे कि दीदी आपने कहा था आप कहानी को डीकोड करेंगी, तो बताइए इस कहानी को डीकोड करके कि हम इसके क्या अर्थ समझें। इस कहानी का अर्थ मैं एक और कहानी आपको सुनाऊंगी, फिर बताऊंगी। कंस लगातार चालें चल रहे थे और एक ना एक असुर को, एक ना एक दानव को भेज रहे थे। वृंदावन में आने वाला अगला दानव था व्योमासुर। बच्चों, वो एक चरवाहे बालक का वेश धारण करके आया। तब कृष्ण तथा उनके साथियों ने चरवाहे और भेड़ चोर नामक खेल खेल रहे थे। 2 दर्जन ग्वाले भेड़ बन गए थे। 7 उनके चरवाहे और संयोगवश व्योमासुर को भेड़ चोर बनाया गया था। खेल खेल में कई भेड़ बने ग्वालों तथा कुछ चरवाहे बालकों को चुरा कर वो दूर एक गुफा में कैद कर आया। उसने कई बार ऐसा किया तो कृष्ण ने देखा कि उनके साथी ग्वाले चरवाहे गायब हो रहे हैं, केवल 5-6 ही बचे हैं। अंतिम बार कृष्ण ने उनका पीछा किया और उसके दानवी खेल का रहस्य जान गए। कृष्ण ने व्योमासुर को ललकारा, तब दानव ने असली रूप में आकर कृष्ण पर आक्रमण किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और कृष्ण ने एक शक्तिशाली वार कर दानव की जीवन लीला को समाप्त कर दिया और अपने साथियों को गुफा के कैद से मुक्त करा लिया। सभी गोप और मित्र कृष्ण का पराक्रम देखकर दंग रह गए, है ना बच्चों? अब व्योमासुर की मृत्यु का प्रतिशोध भी लेना था, तो उसी दिन उसका भ्राता अघासुर भी आ पहुंचा। वो एक विशाल अजगर के रूप में आया और पगडंडी पर बैठ गया, जिस पर से ग्वाले चरवाहे अपने पशुओं के साथ आया जाया करते थे। उसने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उसका मुंह एक गुफा मार्ग जैसा लगने लगा। ग्वाले सकरी घाटी समझकर उसके मुंह में अपने साथ साथ बछड़े और भेड़ बकरियों को भी ले गए। कृष्ण ने पीछे से चिल्लाकर चेतावनी दी, परंतु ग्वाले चरवाहे उनकी बात नहीं सुन पाए। तब कृष्ण वहां दौड़कर पहुंचे और अघासुर के मुंह में कूद गए और अपना शरीर इतना बढ़ाया कि अघासुर ने अपना मुंह बंद करना चाहा, तब भी बंद नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि जब कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाते गए तो अजगर की सांस रुक गई और एक बार पुनः अघासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, जो सबसे बड़ी बात है वो आती है अब इन कथाओं को डीकोड करने की, है ना? तो बताऊं आपको या आप लोग खुद ही समझ गए हैं इस कहानी को? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आज के जीवन में इस कहानी को हम कैसे इसे प्रासंगिक माने, क्योंकि आज असुर दानव ये तो देखने को नहीं मिलते, तो चलिए अब कृष्ण की इस लीला को थोड़ा सा डीकोड करते हैं। अब देखिए, कंस लगातार दानव भेज रहा है, कृष्ण लगातार उनको मृत्यु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। इस बात में छुपी है एक बात बच्चों, कि लगातार आपके साथ कोई बुराई करना चाहे तब भी आप चाहो तो उसको परास्त कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे आपको क्या चाहिए? आपका फोकस चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके दोस्त गुफा समझकर अंदर चले गए, लेकिन कृष्ण को समझ में आ गया कि यहाँ कोई चाल है। और कृष्ण ने क्या किया? अपना शरीर बढ़ाकर उस राक्षस के शरीर में जा घुसे और अपने शरीर को इतना विराट रूप में दिखाया कि उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया। अब दूसरी बात बच्चों ये है कि जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे इस कहानी में आपने सुना कि कैसे सारी भेड़ें गायब हो रही हैं, लौट नहीं रही हैं, है ना? कृष्ण को अचानक याद आया कि ये तो कोई चाल है। अब आप आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ ऐसा कभी कुछ हो ही सकता है कि हम ये दिमाग लगाएं कि जो सामान्य नहीं है, अगर कुछ भी असामान्य हो रहा है तो उस पर ध्यान दें, उसको इग्नोर करके या अवॉइड करके आगे ना बढ़ें। जैसे हम रोज खेलने जाते हैं, कभी पार्क में, है ना, कभी हम अपने घर के गार्डन में खेल रहे होते हैं, कभी मोहल्ले में हम दूर तक खेलने निकल जाते हैं, कभी अपने दोस्तों के घर भी चले जाते हैं। अगर तो सब कुछ सामान्य है बच्चों, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर छोटी सी बात भी आपको ऐसी लग रही है जो असामान्य है, तो ईश्वर आपकी रक्षा तभी करेंगे जब वो बात आप अपने माता पिता को बताएंगे, है ना। वो छोटी सी बात जो आपको असामान्य लग रही है, कोई भी डेली रूटीन की कोई भी बात जो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो अपने माता पिता को ज़रूर बताएं, है ना। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि माता पिता को धरती पर ईश्वर ने आपकी रक्षा, आपका ध्यान, आपकी हर बात सुनने के लिए भेजा है बच्चों। कहते हैं ना, धरती पे भगवान रोज दिखे ना दिखे, लेकिन माता पिता का रूप भगवान का ही रूप होता है। इसलिए पहले तो उनका बहुत सम्मान कीजिए, और फिर दूसरी बात, उनसे कुछ मत छुपाइए। एक बार की बात है, जब द्रौपदी चीरहरण के वक्त कहती हैं, ये मैंने एक प्रसंग सुना था एक कथा में, बड़ा अच्छा प्रसंग है बच्चों, आपको बता रही हूँ क्योंकि ये भी कृष्ण जी से ही जुड़ा प्रसंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि द्रौपदी कह रही हैं कि कृष्ण, जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम कहाँ थे? तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब दुर्योधन ने ये ऐलान किया कि पासा मेरा मामा फेंकेगा, तब तुम्हारे पतियों को ये याद क्यों नहीं आया कि पासा कृष्ण फेंकेंगे? अगर पासा मैं फेंकता तो संभव है कि कोई और जीत जाता। तो कई बार हम इतना देर से अपने माता पिता को, इतना देर से ईश्वर को याद करते हैं कि तब तक बहुत देर हो जाती है बच्चों, है ना। तो कृष्ण ने भी यही कहा कि द्रौपदी, जितनी तुम नाराज हो रही हो उतनी बड़ी गलती मेरी है नहीं। एक बार सभी कौरवों से पूछो कि क्या उन्होंने ये सब होने से पहले मुझे याद किया था। तो हमेशा याद रखिए कि जब किसी मुश्किल में पड़े, अपने माता पिता को, अपने ईश्वर का जरूर ध्यान करें। हो सकता है बहुत सारी मुश्किलों से आपको वो पहले ही निकाल लें, क्योंकि क्या होता है, एक और कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख गई पूरी, जब कोई घटना हो ही गई, तब ऐसी बरसात का क्या फायदा, तब ऐसी बात बताकर क्या फायदा। और फिर आप चलिए कुछ हो भी गया बच्चों तो उसका भी हल है, लेकिन पहले अगर बता देते हैं कोई भी बात तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इसी बाल सभा में हमने उन बच्चों से भी आपकी बात कराई थी जो बच्चों को नशे की लत लग गई थी, याद आ रहा है आपको? ऐसे भी बच्चे स्टूडियो में आए थे, लेकिन उनके जीवन में वो घटना घट चुकी थी। पर अब जब बाल सभा से आप ऐसी बातें सुन रहे हैं, बाल सभा में हम लोग आपके लिए ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, ऐसी बातें आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपको पहले ही मार्गदर्शन दे सकती हैं, तब हमें क्या करना है? तब हमें इन बातों को ध्यान से सुनना है। क्योंकि इसी बाल सभा में एक बच्चे ने आपको बताया था कि नशे के कारण उसका एक दोस्त अंत में इस जीवन से चला गया। वो बच गया क्योंकि उसको कुछ बहुत अच्छी दीदियां मिल गई, उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। लेकिन अब जब हम ये बात सुन रहे हैं बच्चों, तब हम ये बात जान सकते हैं कि नहीं, हमें उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे बड़े भाई की तरह या कुछ आपको गलत संगत में लाना चाह रहा है या कोई गलत बात सिखा रहा है, तब वहीं हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये बात सामान्य नहीं है, ये बात असामान्य है। तो सबसे पहले किसे बताना है? अपने माता पिता को। यही है कहानी को आज जो डिकोड किया मैंने आपके लिए वो। और याद रखिए बच्चों, कई बार लोग जो कहते हैं ना, वो बहुत सही बात कहते हैं कि कुछ बच्चे ये सुनकर सीख जाते हैं कि बिजली में करंट आता है उसे हाथ नहीं लगाना, लेकिन कुछ बच्चे करंट खाकर सीखते हैं कि इस तार में करंट है। हमें तार क्यों छूना बच्चों? जब हमें पता है कि वहां पर करंट है तो हमें उसे क्यों छूना है? क्योंकि अगर छू लिया, हो सकता है कि वो करंट हल्का हो, आपका हाथ झनझना जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत तीव्र करंट हो और आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएं। तो हमें क्यों नहीं माननी अच्छी बातें? क्यों हमें सब कुछ करके ही उसके अंजाम को देखकर ही मानना है कि ये चीज गलत है? कई बार अपने बड़ों की बातें बच्चों मान लेनी चाहिए। अब आगे की कहानी सुनाऊं आपको। अब क्या होता है कि कृष्ण, बलराम और पूरा गोपदल वन में लुका छिपी के अतिरिक्त और भी कई तरह के खेल खेलते थे। रोज नए नए खेल सुझाए और खेले जाते थे। पक्षियों, दूसरे जीवों पर कीटों की बोलियों की नकल उतारना सबको भाता था। जंगली जीवों के नन्हे बच्चों की तरह फुदकना, कुलाचे भरना, कूदना, फांदना, सब कुछ बहुत अच्छे से इन बच्चों को भाता था। एक बार वन में आग भड़क गई। लपटों ने घास और पेड़ पौधों को लीलना आरंभ कर दिया। जंगली जीवों और चरगाहों में चरते पालतू पक्षियों का जीवन भी खतरे में पड़ गया। गोपो ने कृष्ण से कुछ उपाय करने की गुहार लगाई तो कृष्ण ने उन्हें आंख बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने आंख बंद कर ली तब श्री कृष्ण ने मुंह द्वारा एक लंबी सांस भरी और सारी लपटें अपने भीतर खींच ली। जब गोपो ने अपनी आंख खोली तो अग्नि का कहीं नामो निशान न पाकर घोर आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा ली और प्रशंसा भाव से अपने सखा कृष्ण की ओर देखने लगे। अच्छी है ना ये कहानी? इसके बाद की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, अपनी दादी नानी, मामा मौसी, किसी न किसी से जरूर सुनी होगी कि वृंदावन के निकट यमुना नदी के पानी में एक दैत्याकार काला नाग रहता था जिसके एक सौर लहराते हुए फन थे और उसका नाम था कालिया। वो अपना घातक विष पानी में घोलता और जो भी पशु वो पानी पीता तुरंत मर जाता। तत्पश्चात कालिया उन्हें खा जाता। मृत्यु के भय के कारण कोई वहां का जल पी नहीं पा रहा था। यमुना जी के इस इलाके पर कालिया का एक छत्र राज्य था। एक दिन कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। कृष्ण अपने गोप सखाओं को खेलने के लिए नदी तट पर ले गए। जब उनकी गेंद पानी में गिरी तो उसे लाने के लिए कृष्ण पानी में कूद पड़े। क्रोध से फुफकारते कालिया ने कृष्ण को अपनी लपेट में ले लिया और लगा कुंडली कसने। उत्तर में कृष्ण ने अपना शरीर फुलाना आरंभ किया। उनके शरीर का फुलाव इतना शक्तिशाली था कि कालिया की हड्डियां चटकने और टूटने लगीं। कालिया ने तुरंत कुंडली खोल दी। जब आशंका में डूबे नंद बाबा, यशोदा और दूसरे लोग तट की ओर दौड़े तो उन्होंने बालक कृष्ण को पराजित कालिया के फन पर बांसुरी बजाते और नृत्य करते पाया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब बच्चों, इन दो कहानियों को डीकोड करने से पहले मुझे लगता है हमको तीसरी कहानी भी सुन लेनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है। गोवर्धन पूजा होती है कई लोगों के, सुना होगा आपने, है ना? दीपावली के दूसरे दिन वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की परंपरा थी ताकि समय पर बरसात हो। कृष्ण ने लोगों से कहा इंद्र की पूजा करने के स्थान पर क्यों ना गायों की पूजा की जाए जो हमें दूध देती हैं, अथवा क्यों ना गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए जो हमारे पशुओं के लिए घास उगाता है। लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा उस दिन ना करके किसकी की? पर्वत की। इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी। जल थल एक हो गया, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। कृष्ण सभी को पशुधन सहित गोवर्धन की तलहटी पर ले गए और गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण करके खड़े हो गए। वृंदावन वासियों एवं उनके पशुओं ने उसके नीचे आश्रय ले लिया। सात दिन पानी बरसा, कृष्ण उसी मुद्रा में खड़े रहे। अंत में इंद्र ने पराजय स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा याचना की। तभी से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की प्रथा आरंभ हुई। अब इन तीन कहानियों को ना एक साथ डीकोड करते हैं बच्चों। पहली कहानी क्या थी? याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा, मैं याद दिलाऊं। एक कहानी तो थी कालिया नाग की, उससे पहली कहानी थी जब जंगल जल रहे थे तब उनके दोस्तों ने कहा कि ये तो बड़ा खराब है कि सारे कीट पतंगे सब जल जाएंगे। अब इस कहानी को हम डिकोड करते हैं। तीनों कहानियां प्रकृति के करीब की कहानियां हैं। ये तीनों कहानियां हमसे कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंसानों का साथ नहीं देना है, कभी कभी हमें अपनी नजर उस तरफ भी दौड़ानी है जो खुद बोल नहीं सकते, जैसे पौधे, जैसे पेड़, जैसे कीट पतंगों की भाषा। चिड़िया चहकती तो रोज है, लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं कि वो आपके दरवाजे पर आकर क्या बोल रही है। कुछ लोग तो गर्मी में उसके लिए कटोरे में सकोरे में पानी रख देते हैं क्या, लेकिन सब लोग रखते हैं? नहीं। कृष्ण की तरह ये लीला हम तो नहीं कर सकते कि हम पूरी आग को लील कर उस आग को एक चुटकी में समाप्त कर दें, लेकिन हम इस कहानी से बच्चों सीख लेकर ये जरूर कर सकते हैं कि जब भी कभी जंगलों में जाएं या उसके आसपास जाएं, तो कोई भी ऐसा सामान जो आग को बढ़ावा दे सकता है, ज्वलनशील पदार्थ जिन्हें बोलते हैं, उनसे बचे। ठीक। दूसरी चीज बच्चों, गोधन। इसमें एक शब्द आया ना, गोधन, गाय जो हमें दूध देती हैं। हाँ, हमारा कितना सारा अन्न हमें खेती से मिलता है, कृषि से मिलता है, क्यों ना हम अपने खेतों की, उस पर्वत की जहाँ घास है और जिसे पशु खाते हैं, कितनी बड़ी बात है। मतलब प्रकृति की सुरक्षा का संदेश देती है ये कहानियाँ। अब आसान भाषा में आपको समझ आया कि गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया, ये भी कृष्ण की लीला है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई वो बात है जो हम सबको करनी है। क्या? आसपास पहले तो देखिए कि आपकी हरियाली हो। दूसरी बात, आपके आसपास अगर आप कहीं गए हैं, पर्वत श्रृंखला है कोई, अगर आप ऐसी जगह कहीं गए हैं जहां प्रकृति के खूबसूरत नजारे हैं, तो वो बने रहें। इसके लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे कई बार मैंने देखा है लोग नदी के तट पर जाते हैं और खूब सारी कचरा गंदगी छोड़ कर आते हैं। क्यों? क्यों? यही तो ये कहानियां सिखा रही हैं हमको कि प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन और उनका स्वास्थ्य। अब आप कहोगे नदी का भी कोई स्वास्थ्य होता है? मैं कहूंगी हाँ, बिल्कुल होता है। नदी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये पूरे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है? नर्मदा नदी। अब हम उसको कैसे संरक्षित और सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं बच्चों? सबसे पहली बात, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना के बराबर कीजिए, क्योंकि जो प्लास्टिक नदियों में जाती है वो जलीय जीव को नुकसान पहुंचाती है, उनका जीवन खतरे में पड़ता है। और आप देख रहे हैं कृष्ण जी कैसे अपनी गायों को बचाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, कीट पतंगों के लिए पूरी आग को अपने मुंह में ले लेते हैं। तो क्यों नहीं हम छोटे छोटे से बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, वो ये प्रयास करें कि अब की बार जब कहीं जाएंगे तो ये चिप्स के पैकेट्स, ये प्लास्टिक की बॉटल, ये सब कचरा जो भी आपके कारण वहां हो रहा है, उसे वापस अपने साथ लेकर आएंगे, है ना? लेके आएंगे कि नहीं? अगर आप लेकर आएंगे तो नदी थोड़ा सा अच्छी अच्छी लहर उठाकर आपको थैंक यू बोलेगी। तो चलिए, अब समय आ गया है कि हम संकल्प ले लें। तो एक बार पुनः अपनी आंखें बंद कर लीजिए, शांति की मुद्रा में बैठ जाइए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। जो ख्याल आपके मन में बच्चों आ रहे हैं, उसे आने दीजिए, बस शांत रहिए। आज की जो कहानियां हमने सुनी हैं, उनको सुनकर हमारा पहला संकल्प है कि हम कभी भी कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होंगे। हमारा दूसरा संकल्प है, हम स्वयं के साथ साथ बेजुबान जीवों का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे। तीसरी बात, यदि हमें कुछ भी अपनी जिंदगी में असामान्य लग रहा है, सबसे पहले अपने माता पिता को बताएंगे। और अब आज का आखिरी संकल्प, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का स्वास्थ्य, इन सब का ख्याल हम बच्चों को जरूर रखना है, क्योंकि प्रकृति की जिम्मेदारी में ही समझदारी है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रगड़िए धीरे से आंख पे लगाइए और बच्चों बहुत धीमे से आंखें खोल लीजिए। अब जब आंखें खोल ली हैं तो मुझे बहुत प्यार से जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आज की बाल सभा में हमने जो बातें की हैं वो बातें यही थी कि पौराणिक कथाएं जो हमारे घर में हमारे दादी बाबा, नाना नानी, मम्मी पापा सुनाते हैं, उन सब कथाओं का, उन सब कहानियों का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। तो उनको न सिर्फ सुनना है बल्कि समझ में नहीं आ रहा है तो मम्मी पापा से उसको डिकोड भी करवाना है। अब चलो, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, तो प्लीज़ बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलती हूँ, अगली बाल सभा में फिर कुछ अच्छी बातें करने के लिए लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति कौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी मित्र मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: बच्चे अभी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आज के कार्यक्रम का विषय था पौराणिक कथाओं का महत्व। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी और उनके साथी बाल कलाकारों ने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु। इस कार्यक्रम में आज का विषय है दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी और इनसे बातचीत कर रहे हैं फराज फयाज।
1: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
2: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की
1: विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर। यह दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
3: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर।
4: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो वहाँ बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट PSC के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के एक बॉक्स को, जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
3: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज से आपका जुड़ाव होता रहा?
4: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया है कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान लीजिए किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि पाँचवें नंबर के कैसेट में है कि आठवें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
3: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
4: जी, उनका जो
3: हर क्षेत्र में,
4: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है, बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हीलचेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात तो और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो आप हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के 2nd Thursday जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, तुम बिना आँख के भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स, ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने, कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिलके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है, या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम में उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता
0: जी।
1: या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाएं कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाएं।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे साथी फराज फैयाज। इसके साथ ही हमारा आज का टेक गुरु कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है नेवी और एयरफोर्स की कार्यप्रणाली। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी अदिति गौड़।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: अगर हम बात करें तो 2 अन्य मुख्य सशस्त्र सेनाएं भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जल सेना है और वायु सेना है। तो इंडियन आर्मी के अलावा अगर आप हमें बता सकें इंडियन नेवी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है और एयरफोर्स का किस तरह का रहता है।
3: ओके अदिति, हम इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं।
2: जी,
3: वदित है कि हमारे पास जो कोस्टल लाइन है
2: जी,
3: 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है।
2: कर्नल साहब, ये वो 15,000 किलोमीटर की जो आपने सीमा बताई थी वो आपने लैंड बॉर्डर की बात की थी, और अब आप जल की बात कर रहे हैं।
3: हमारा देश 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है,
2: पेनिनसुला है।
3: और इसके अलावा हमारे देश में, जैसे आपको मालूम है कि बे ऑफ बंगाल में तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर मेन लैंड से 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। 572 मतलब छोटे मोटे नहीं होते, काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। इसी तरह से हमारे जो अरेबियन सी में जो है तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप आइलैंड्स का 36 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इन सबकी सुरक्षा
2: भी बहुत महत्वपूर्ण है और जटिल है।
3: और जटिल है
2: जी,
3: इसकी इनकी सुरक्षा करना बहुत ही जटिल कार्य है। और हमारे पास 7500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन के अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसपे कि हमारे देश का अधिकार होता है, उसके उसको कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सी में।
2: तो
3: और जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो 97% ऑफ जो ट्रेड होता है हमारे देश का व्यापार है वो सी रूट से होता है।
2: करण साहब, मैं बस एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या इकोनॉमिक जोन, जिसके बारे में आपने भी बात की, उसकी रक्षा का दायित्व भी इंडियन नेवी का रहता है?
3: हाँ जी, बिल्कुल रहता है, क्योंकि इस चीज़ पे भी हमारा हक है, तो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना जो है
2: हमारी जिम्मेदारी,
3: हमारी जिम्मेवारी होती जी। है तो दूसरा ये है कि जैसे मैंने भी बोला कि 97% ऑफ हमारा जो ट्रेड है वो सी रूट से होता है। तो ये जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, स्लॉक जो है, इसकी देखभाल करना, इसकी सुरक्षा करना जो है, ये भी नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। इंडिया में हमारे पास जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और तकरीबन 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, मतलब बड़े पोर्ट्स हैं। और इन पोर्ट्स में जो है हमारा 95% जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, जो हमारी देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, नेवी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश की सुरक्षा, सी की तरफ से आने वाले किसी भी बाहरी हमले से अपने देश की सुरक्षा करे, अपना जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी देखभाल करे, सुरक्षा करे। जो हमारे पोर्ट्स हैं और जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथली काम कर सकें, ये एक उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी
2: है। यानी इंडियन नेवी जो है वो सैन्य सुरक्षा के अलावा आर्थिक सुरक्षा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है।
3: बिल्कुल योगदान करती है, बिल्कुल करती है। और हमारी जो नेवी है वो, इसको हम बोलते हैं कि इट्स अ थ्री डायमेंशनल फोर्स। थ्री डायमेंशनल फोर्स कैसी होती है कि आपने देखा होगा नेवी जो है उसके पास अपने एयरक्राफ्ट हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं देश को, हवाई सुरक्षा भी देते हैं, उसके अलावा शिप सरफेस के ऊपर जो है शिप्स चलते हैं सी में, और सबमरीन्स होती हैं जो कि अंडर वाटर भी ऑपरेट करती हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो थ्री डायमेंशनल जो है प्रोटेक्शन फोर्स है। नेवल हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, इनका जो नेतृत्व करते हैं उनको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहा जाता है, वो भी जनरल साहब के रैंक के बराबर हुए रहते हैं। और नेवी की तीन जो है कमांड्स हैं,
2: जैसे आर्मी की आपने बताई थी सात हैं,

0: ट्रेनिंग का इनके इंस्टीट्यूट हैं, जो भी इनका ट्रेनिंग का कार्य है, मतलब रिक्रूटमेंट लेके ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग कमांड की रहती है। जो नेवी है, जिस तरह से हमने बात करी थी कमांड के अंडर में कोर होती हैं, ठीक है, इसी तरह से नेवी में देखा जाए तो फ्लीट्स होती हैं। तो अच्छा। दोनों जो फ्लीट्स हैं, वेस्टर्न फ्लीट और जो है वो मुंबई में बेस्ड है, और ईस्टर्न फ्लीट जो है वो हमारी विशाखापट्टनम में बेस्ड है। फ्लीट क्या होता है, जब मैं बोल रहा हूँ फ्लीट, जो शिप्स होती है ना
1: जी,
0: उसका एक ग्रुप होता है।
1: अच्छा।
0: जो एक अथॉरिटी के अंडर में काम कर रहा होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये जो फ्लीट्स हैं इसके अंडर में, देन उसके नीचे क्या है, फ्लोटिला बोलते हैं, ठीक है, वो आती हैं, जो कि मतलब अगेन सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं, जैसे हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नीचे फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ताकि आप जैसे हमने आर्मी में देखा था कि कमांड है, कोर है, कोर के नीचे डिवीजन है, तो ऐसे ऐसे से मतलब जो है नीचे फ्लोटिलास होती हैं, ये जो होते हैं अगेन ग्रुप ऑफ शिप्स होती हैं, और ये अलग अलग जगह पे जो है बेस्ड होती हैं, जैसे पोर्ट ब्लेयर में है, उसके बाद जो है विशाखापट्टनम में है, ताकि उनको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर कट डिवाइड हो सके। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का द्वीप समूह है
1: जी,
0: उसका जो कमांड एंड कंट्रोल है या उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ट्राई सर्विस कमांड होती है
1: जी।
0: ट्राई सर्विस कमांड का मतलब तीनों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं तीनों मिलके जो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को देखती हैं।
1: अच्छा, इनका संयुक्त जिम्मेदारी
0: रहती है। ये हमारे देश में एक कमांड है जो कि तीनों मिलके देखते हैं।
1: जाहिर सी बात है क्योंकि आपने बताया 572 आइलैंड्स का समूह है
0: जी,
1: तो
0: उसमें हमें तीनों चीजें चाहिए होती हैं। उसमें हमें आर्मी भी चाहिए देखभाल करने के लिए, नेवी भी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, और हमें एयरफोर्स भी चाहिए। तो इसमें जो है तीनों जो होती हैं तीनों मिलके जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की देखभाल करते हैं। इसको हम अंडमान एंड निकोबार कमांड बोलते हैं।
1: आपने हमें बताया कि तीन कमांड रहती है, ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, और एक ट्रेनिंग कमांड जो रहती है। ये इससे इतर है कि ये इसी में सम्मिलित है?
0: बिल्कुल इससे अलग है, ये इससे अलग है। तीन तो जो कोस्टल लाइन को देखती है, मेन जिसमें से कि दो मतलब देख रही हैं, एक दो ऑपरेशनल कमांड है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड जो देख रही हैं, और इसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक अलग कमांड है,
1: और क्योंकि उसमें तीनों का हिस्सा, संयुक्त
0: तीनों का संयुक्त
1: योगदान
0: है। तो उनके जो कमांडर होते हैं, जो कमांड को जो लीड करते हैं, वो भी तीनों में बारी बारी से बनते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड का जो है वो वेस्टर्न फ्लीट है, वही उसकी देखभाल करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड थोड़ा छोटा है, 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, वेरस वो 572 है, तो काफी बड़ा है, तो उसके लिए जो है इस तरह से जरूरत पड़ती है। एक तरह से हमारी जो नेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि देश की पूरी सी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है करते हैं।
1: कर्नल साहब, एक छोटा सा प्रश्न है, आपने बताया था कि आर्मी में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो सेक्शन होती है, इसी तरह से नेवी में कौन सी इकाई होती है जो सबसे छोटी मानी जा
0: सकती होती है?
1: शिप।
0: अब शिप में, लेकिन शिप अलग अलग होती है, शिप बहुत बड़ी भी होती है। INS विक्रांत वो तो मतलब अपने आप में शहर है पूरा का पूरा
1: जी, पूरी बड़ी रोचक जानकारी है, इसीलिए मैंने पूछा था जी।
0: और जो उससे भी छोटे से छोटे शिप भी होते हैं, जो कि बहुत फास्ट मूविंग शिप्स होते हैं
1: जी।
0: इकाई के नाम पे जैसे हम इन्फेंट्री से डायरेक्टली इसको एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन शिप को ही आप कह सकते हैं कि होता है। नेवी में जो है शिप का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इनकी जो शिप्स होती हैं वो बहुत अलग अलग रोल के लिए अलग अलग तरह की शिप्स होती हैं। अगर हम उसमें जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, अलग अलग तरह की शिप्स होती हैं कि वेट्स के हिसाब से होता है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से, उसमें जो गन्स लगी होती हैं, उनकी फायर पावर होती है, उनकी स्पीड होती है, उसके हिसाब से जो है उनका क्लासिफिकेशन होते हैं, तो वो बहुत ही अलग अलग होता है।
1: तीन सशस्त्र सेनाएं जो हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भले एक सा हो सकता है, लेकिन जहाँ ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की बात आती है, ऑपरेशंस की बात आती है, वो किस तरह का संचालन करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत मतलब पर्टिकुलर हो जाती हैं, कस्टमाइज हो जाती हैं। नेवी का अपनी तरह का काम करने का तरीका रहता है, आर्मी का अपना रहता है, फोर्स का अपना संगठन और अपना वो रहता है। जैसा कि आपने बताया शिप होती है इनकी सबसे छोटी इकाई, जिसको हम आर्मी से नहीं मिला सकते, आपने कहा कि डिट्टो वैसा का वैसा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। आगे की कड़ी में हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि एयरफोर्स का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है।
0: ये तीनों जो अंग हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, चाहे इनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से होती है, लेकिन जो इनका इंटीग्रेशन है
1: जी,
0: वो बहुत ही स्ट्रांग है
1: जी।
0: जैसे हमारी काफ़ी एक्सरसाइज होती हैं जो हम लोग मिलके करते हैं, एम्फीबियस एक्सरसाइज होती हैं जिसमें नेवी के साथ आर्मी जाती है, एयरफोर्स के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें ये एक ऐसी बात होती है कि जैसे हमारा जो इंटीग्रेशन होता है आपस में, जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक के बगैर दूसरा काम नहीं कर सकता है,
1: जाहिर सी बात है।
0: तो ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है। जो बेस है हमारा स्टार्टिंग है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वही तीनों के तीनों अंगों के जो ऑफिसर्स को ट्रेन करता है। उसके बाद जैसे जो है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज आता है, उसमें भी जो है तीनों अंगों के ऑफिसर्स आते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। अदिति, जो इंडियन एयरफोर्स है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे देश को और उसकी एयरस्पेस को किसी भी एयर थ्रेट से बचाना
1: जी,
0: उसकी डिफेंस करना। एयरफोर्स जो है, इसके अलावा जो भी हमारे ऑपरेशंस इंडियन आर्मी करती है उसमें पूरा सपोर्ट देते हैं, और साथ में इनके पास जो है स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज होती हैं, मतलब इनके पास एयरक्राफ्ट होते हैं जिससे कि ये हमारी सेना को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचाने में मदद भी करते हैं
1: जी।
0: इनका सेकेंडरी टास्क जो होता है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी आपदा में, नेचुरल कैलामिटीज में, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में हेल्प करना। जैसे आपने देखा होगा फ्लड में जो है हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन होता है, और उसके अलावा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसी तरह से अगर कोई और नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स है, ये इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें 7 कमांड हैं, जिसमें से कि 5 ऑपरेशनल कमांड हैं और 2 फंक्शनल कमांड हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और जो इनकी कमांड होती हैं, जो उसको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ विद रैंक ऑफ एयर मार्शल जो है वो कमांड करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल कमांड जो है वो इलाहाबाद में है, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में है, और ईस्टर्न एयर कमांड जो है शिलोंग में है, साथ ही सदर्न एयर कमांड जो है इसकी लोकेशन ट्रिवेंड्रम में है। 2 जो फंक्शनल कमांड है, जो कि ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर में लोकेटेड है और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। जो कमांड होती है इनके अंतर्गत जो है विंग्स आते हैं, जो कि जनरली एयर कमांडर कमांड करते हैं, और विंग्स के अंतर्गत जो है स्क्वाड्रन्स आती हैं। हर स्क्वाड्रन जो है इसमें तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, और इनको जो है कमांड करते हैं विंग कमांडर्स, कमांड करते हैं, और स्क्वाड्रन्स जो होते हैं सब डिवाइडेड होते हैं फ्लाइट्स में, और फ्लाइट्स जो होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं सेक्शंस में। ये मोटे तौर पे मतलब जो है एयरफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। हर सेक्शन में जो है 3 एयरक्राफ्ट होते हैं, और ये एक तरह से जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंडियन एयरफोर्स में, और इसको जो है लीड करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट लीड करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो ब्रांचेस हैं वो फ्लाइंग ब्रांच, जिसमें कि फ्लाइंग के लिए रहते हैं, टेक्निकल ब्रांच, और ग्राउंड ब्रांच होती है। ग्राउंड ब्रांच में बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेडिकल और मेटलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं। टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग के लिए जो लोग होते हैं वो आते हैं।
1: कई देशों से भारतीय नागरिकों को बचाने में भी भारतीय वायुसेना का बड़ा योगदान रहा है।
0: बिल्कुल, अभी यूक्रेन से भी जो बच्चों को लेकर आए गए थे उसमें भी इनका योगदान रहा था। तो ये जो है इस तरह से जो है काफ़ी सपोर्ट इनका रहता है, और इवन जब पीस टाइम में भी अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जब जरूरत पड़ती है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन से लोग कैरी आउट करते हैं, नेचुरल कैलामिटीज में भी पूरा सपोर्ट इनका रहता है। इनकी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है
1: जी,
0: वो दिल्ली में स्थित है
1: जी,
0: और इनको जो है हेड करते हैं एयर चीफ मार्शल हेड करते हैं, जो कि 4-स्टार रैंकिंग जनरल
1: जी
0: के बराबर उनका रैंक होता है, सेम रहता है। और इनके 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं।
1: अच्छा,
0: 5 ऑपरेशनल, जैसे हमने आर्मी में देखे थे कमांड
1: 7 थे और नेवी में 3 थे
0: जी, तो वैसे ही 5 इनके पास जो है ऑपरेशनल कमांड है, 2 इनके पास जो है फंक्शनल कमांड है। अब हर जो कमांड होती है उसको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जिनका रैंक एयर मार्शल होता है
1: जी,
0: वो कमांड करते हैं। इनका जो पर्पस होता है ऑपरेशनल कमांड का, ये क्या करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं यूजिंग एयरक्राफ्ट, जो इनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जो कमांड्स हैं अगर हम देखें तो वेस्टर्न कमांड जो है वो न्यू दिल्ली में है
1: जी,
0: सेंट्रल कमांड जो है वो इलाहाबाद में है
1: जी,
0: साउथ वेस्टर्न कमांड जो है ये गांधीनगर में है, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में लोकेटेड है, सदर्न एयर कमांड वो ट्रिवेंड्रम में है
1: जी,
0: तिरुवनंतपुरम में। इसके अलावा इनके पास दो कमांड और हैं जिनको हम ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड का नाम देते हैं।
1: मेंटेनेंस कमांड सिर्फ एफ उसके पास है, क्योंकि मेंटेनेंस का जिक्र आपने जल सेना और थल सेना में नहीं किया।
0: इसका कारण है कि जो एयरक्राफ्ट हैं उनको आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाके मेंटेनेंस करना उनका काफी इजी रहता है, बजाय इसके कि आप उसको उनके रिसोर्स को जगह जगह वो करें। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस कमांड का ये मतलब नहीं कि एक ही जगह पे है, मतलब उनके जो रिसोर्सेस हैं वो एक चैनल है कमांड कंट्रोल करने का।
1: अच्छा।
0: अब जैसे एक एयरबेस है तो उसमें मेंटेनेंस के लिए एक विंग होता है
1: जी,
0: लेकिन वो विंग जो है उसकी जो जरूरतें हैं वो सब पूरी करने के लिए एक कमांड है
1: जी।
0: अब उसका रीजन भी आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप एक एयरक्राफ्ट देखते हैं उसके जो स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं और उसमें जो जरूरत होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं
1: जी,
0: तो उनके लिए जो है काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। अब कमांड का जैसे आपने इसी में डायरेक्शनल उसमें देखा है वेस्टर्न कमांड सेंट्रल कमांड, तो हर एक का जो एरिया है इनका एक ग्रिड है। ग्रिड इन द सेंस क्या होता है कि पूरा का पूरा जो कंट्री है उसको ये लोग कवर करते हैं।
1: आपने जैसे आर्मी में टेरेन की बात की थी, इस तरह से इनका ग्रिड है।
0: देखिए ग्रिड तो आर्मी में ग्राउंड पे भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ती है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जो है, इसी तरह से एयर में होता है उनका भी जो है। एक्चुअली स्पीकिंग वो ग्राउंड पे ही लैंडमार्क तो ग्राउंड पे ही होते हैं
1: जी,
0: ठीक है, जिससे कि डिफाइन होता है कि इस एरिया से इस एरिया तक आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन क्या है, एयर में ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, वेरस आर्मी में जैसे 7 कमांड है, 6 ऑपरेशनल कमांड है, तो ये एक थोड़ा सा फर्क आता है। एंड इनकी कैपेबिलिटी, क्योंकि इनका फास्ट मोबिलिटी है, अगर एक तिरुवनंतपुरम से एक एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करता है तो उसको मतलब इवन जम्मू पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हम एक जवान को मतलब क्रॉस करने में लगता है या एक इन्फेंट्री यूनिट को लगेगा। कंपेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए वो मायने कम रहते हैं।
1: कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
2: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद।
4: नेवी और एयरफोर्स की कार्यप्रणाली, इस विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, और इनसे बातचीत कर रही थी अदिति गौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीता अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज का विषय है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इस कार्यक्रम को स्वर देंगे दीपक निमा और भगवती सक्सेना।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL यानी एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे माझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे संस्थान भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। माझगांव डॉक ने हमें विशाल युद्धपोतों और पनडुब्बियों की दुनिया दिखाई, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने ये बताया कि कैसे एक छोटे कारखाने से शुरू होकर कोई संस्था देश के अग्रणी शिपयार्डों में स्थान बना सकती है।
1: लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आज दादू और रुचि पहुंच रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर, जहां जुआरी नदी की शांत लहरों के किनारे खड़ा है एक ऐसा शिपयार्ड जिसने छोटे बार्ज निर्माण यार्ड से शुरू होकर आधुनिक युद्धपोत निर्माण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं गोवा और जानते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की कहानी। दादू।
0: हाँ बेटा।
1: कितनी सारी छुट्टियां हमने गोवा में बिता ली है ना। और कितनी सारी जानकारी आपने मुझे दी है अब तक।
0: हाँ बिल्कुल दी है
1: दादू, थैंक यू सो मच आप जो मेरे साथ हैं।
0: वो तो मैं हमेशा साथ हूँ बेटा।
1: अच्छा दादू, अब तक आपने दो बड़े शिपयार्डों के बारे में मुझे बताया, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है दादाजी, कि इन दोनों में अंतर क्या है।
0: देखो रुचि बेटा, माझगांव डॉक मुख्य रूप से बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पूर्वी भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, जिसने अनेक युद्धपोत, गश्तीपोत और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए हैं। और एक है गोवा शिपयार्ड, ये तेज आधुनिक और अत्याधुनिक गश्ती पोतों और खास नौकाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
1: मतलब तीनों संस्थान अलग अलग प्रकार से भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की शक्ति बढ़ाते हैं दादू। इसका तो ये मतलब हुआ कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, उनके पीछे हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक भी देश के रक्षक होते हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बिटिया, और गोवा शिपयार्ड जैसी संस्थाएं हमें सिखाती हैं कि यदि दृष्टि बड़ी हो और प्रयास निरंतर हो, तो एक छोटा सा यार्ड भी राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान दे सकता है।
1: सही कहा आपने दादाजी, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ये यार्ड दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा।
0: सोचो बेटा कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले यहाँ कोई विशाल शिपयार्ड नहीं था, ना आधुनिक मशीनें थी, ना विशाल क्रेन, ना कंप्यूटर, केवल एक छोटा सा यार्ड था जहाँ कुछ लोग साधारण नावों और बार्जों पर काम करते थे।
1: कितनी अलग दुनिया होती होगी ना तब दादाजी, इतने बरस पहले। अच्छा ये बताइए ना, क्या कोई प्रेरणादायक कहानी आपको याद आ रही है।
0: हाँ बिल्कुल, चलो आज वही सुनाता हूँ। एक नदी जुआरी जो सदियों से बह रही है।
1: जुआरी नदी?
0: हाँ, पहले सुन तो लो बच्चे। उसने व्यापारियों को आते जाते देखा।
1: अच्छा।
0: जाने कितनी नावों, जहाजों को देखा, लेकिन एक दिन उसके किनारे एक छोटा सा यार्ड बना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं से भारत की समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आज ये नदी देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उसी यार्ड की कहानी की गवाह है।
1: शांत जल, ठंडी हवा और सामने दूर तक फैला हुआ शिपयार्ड, और पास ही आपकी जुआरी नदी।
0: हाँ बेटा, ये जुआरी नदी गोवा की जीवन रेखा है, और इसी नदी के किनारे खड़े इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हम संक्षेप में GSL कहते हैं।
1: अच्छा दादू, ये बार्ज क्या होता है?
0: बार्ज बेटा एक प्रकार का जलयान होता है, जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा यार्ड एक दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्डों में गिना जाएगा।
1: अच्छा दादू, आपने मुझे पहले बताया था कि गोवा कभी पुर्तगाल के अधीन था, अब ये बताइए कि ये भारत का हिस्सा कब बना?
0: ये बना बेटा सन 1961 में, जब गोवा मुक्ति अभियान सफल हुआ और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बच्चे, ये विकास की नई शुरुआत भी थी।
1: विकास की नई शुरुआत? वो भला कैसे?
0: देखो बेटा, देश की नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि अब भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उस समय बेटा पश्चिमी तट पर एक सक्षम शिपयार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तभी गोवा में मौजूद छोटे यार्ड की क्षमता को पहचाना गया और यहीं से भविष्य के गोवा शिपयार्ड की नींव मजबूत होने लगी।
1: दादू, क्या तब भी इसका नाम गोवा शिपयार्ड ही था?
0: नहीं नहीं बेटा, उस समय इसका नाम था एस्टेलेरोस नावाइस डी गोवा।
1: दादू, ये नाम तो काफी अलग लगता है।
0: हाँ हाँ, ये नाम बेटा पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप भी बदला और नाम भी। भारत सरकार ने इसे विकसित किया, आधुनिक बनाया और धीरे धीरे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बन गया।
1: दादू, किसी भी संस्था का विकास केवल इमारतों से नहीं होता होगा, उसके पीछे कई लोगों के सपने होते होंगे ना?
0: हाँ बेटा, ये बात पूरी तरह सही है। किसी भी संस्था का विकास किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अगर शिपयार्ड की बात करें तो इसके विकास के पीछे कई इंजीनियरों की मेहनत होती है, तकनीशियनों की मेहनत होती है, उनका कौशल होता है और भविष्य की स्पष्ट योजना होती है।
1: यानी गोवा शिपयार्ड का विकास धीरे धीरे हुआ होगा। हर साल इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं, नई नई मशीनें आईं, नई नई तकनीकें अपनाई गईं और यार्ड का आकार बढ़ता गया।
0: हाँ बेटा, और यही स्थायी विकास का सही तरीका होता है।
1: दादू, ये बार बार जुआरी नदी का नाम आ रहा है, क्या इस नदी ने भी शिपयार्ड के विकास में कुछ भूमिका निभाई है?
0: बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा। देखो, जहाज निर्माण केवल फैक्ट्री के अंदर होने वाला काम नहीं है, जहाज को पानी तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जुआरी नदी ने ये सुविधा प्रदान की। ये नदी अरब सागर से जुड़ती है, इसलिए यहाँ बने जहाज आसानी से समुद्र तक पहुँचते हैं।
1: मतलब ये नदी शिपयार्ड के लिए एक प्राकृतिक जल मार्ग जैसी है, जैसे हुगली नदी थी।
0: बिल्कुल, इसलिए किसी भी शिपयार्ड का स्थान चुनते समय जल मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ जहाज निर्माण की तकनीक भी बदलती गई और गोवा शिपयार्ड ने खुद को उसी के अनुरूप उसके मुताबिक विकसित किया।
1: दादू, आधुनिक शिपयार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किए गए थे?
0: बहुत कुछ बदलाव किए गए बेटा। पहले जहां हाथ से ड्राइंग बनती थी, वहां अब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होने लगा। जहां उत्पादन में अधिक समय लगता था, वहां आधुनिक मशीनें आ गईं। और जहां सारी जानकारी कागजों पर रखी जाती थी, वहां अब ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया।
1: सो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए, ये ERP क्या करता है?
0: मान लो किसी जहाज के निर्माण में हजारों पुर्जे लगने,
1: ठीक है,
0: किस पुर्जे की जरूरत कब होगी, कहां से आएगा, किस विभाग से जाएगा, कब उपयोग होगा, इन सब का प्रबंधन ERP सिस्टम आसानी से कर सकता है।
1: अच्छा दादू, मैंने अक्सर कंपनियों के नाम के साथ ISO प्रमाणन लिखा देखा है, इसका क्या महत्व होता है?
0: बहुत महत्व होता है। गोवा शिपयार्ड ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है।
1: इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कई महत्वपूर्ण ISO प्रमाणन प्राप्त हुए होंगे।
0: हाँ हाँ बेटा, एक संस्था केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि काम की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
1: अच्छा दादू, ये बताइए ना, आज के समय में GSL की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
0: बेटा, इसकी आधुनिक सुविधाएं, विश्व स्तरीय CAD CAM प्रणाली, उन्नत डिजाइन सेंटर, स्टील और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता और लगातार अनुसंधान एवं विकास पर दिया जाने वाला ध्यान।
1: मतलब यहाँ केवल जहाज नहीं बनते, नई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि GSL भारत के उन चुनिंदा शिपयार्डों में शामिल है जिनके पास अपनी इन हाउस डिजाइन क्षमता है, यानी कई जहाजों की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करने का काम भी यहीं किया जाता है।
1: अब समझ में आ रहा है दादू मुझे कि GSL समय के साथ केवल बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ता गया है।
0: बिल्कुल बेटा, यही निरंतर विकास किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान होता है।
1: दादू, जितना मैं सुनती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए ना, एक छोटा बार्जियार्ड, फिर गोवा मुक्ति, फिर विकास, फिर आधुनिक तकनीक और आज राष्ट्रीय महत्व का शिपयार्ड। ये यात्रा सचमुच बहुत प्रेरणादायक सी लगती है दादाजी।
0: बिल्कुल प्रेरणादायक यात्रा है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कोई भी संस्था जन्म से महान नहीं होती, वो अपने निरंतर प्रयासों, सीखने की इच्छा और दूरदर्शिता से महान बनती है।
1: अच्छा दादू, एक छोटे से यार्ड ने ऐसे कौन कौन से जहाज बनाए जिनसे उसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में हो गई?
0: बेटा, किसी भी शिपयार्ड की सफलता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक जहाज बनता कैसे है। जब हम ये प्रक्रिया समझ लेंगे तब GSL की उपलब्धियां भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी।
1: हाँ दादू, सही कहा आपने। ये भी एक रोचक बात है कि आखिर एक जहाज का निर्माण कहाँ से शुरू होता है।
0: बिटिया, अधिकतर लोग जब किसी युद्धपोत को देखते हैं तो उन्हें केवल उसका विशाल आकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में किसी भी जहाज का निर्माण स्टील से पहले अभियंताओं के दिमाग में शुरू होता है।
1: दिमाग में?
0: और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, याद करो। हर जहाज पहले एक विचार होता है। क्या होता है?
1: सही कहा दादाजी।
0: फिर वो कागज पर उतरता है, उसके बाद कंप्यूटर पर उसका डिजाइन तैयार होता है और अंत में वो वास्तविक रूप लेकर शिपयार्ड में बनता है।
1: तो दादाजी, क्या यही इसका सबसे पहला चरण होता है?
0: नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले नौसेना, तटरक्षक बल या ग्राहक इसे अपनी जरूरत बताता है, यानी जहाज कितनी गति से चलेगा, कितने दिन समुद्र में रह सकेगा, उस पर कितने लोग कार्य करेंगे, कौन कौन से उपकरण लगाए जाएंगे, उसका उपयोग गश्त, बचाव अभियान या युद्ध के लिए होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद डिजाइन प्रक्रिया शुरू होती है
1: और यहीं पर CAD काम आता है।
0: बिल्कुल, शाबाश। हाँ, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करना। सालों पहले हाथ से बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती थी बेटा, लेकिन आज कंप्यूटर पर जहाज का पूरा त्रिआयामी मॉडल तैयार किया जाता है।
1: हाँ दादू, जिसे हम लोग 2D 3D कहते हैं।
0: हाँ हाँ, जिसमें दिखाई देता है उसका हर कमरा, हर पाइप, हर केबल, हर इंजन, यहाँ तक कि किसी तकनीशियन के चलने की जगह भी दिखाई दे जाती है।
1: अच्छा दादाजी, और ये CAM ये क्या है?
0: CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना।
1: सो तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है?
0: जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब वही जानकारी आधुनिक मशीनों को भेज दी जाती है। मशीनें उसी के अनुसार स्टील काटती है, छेद बनाती है, भागों को आकार देती है। इससे समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है।
1: दादू, क्या इसके लिए वाकई में इतनी सटीकता आवश्यक होती है?
0: तुम्हारी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेटा। कल्पना करो कि हजारों स्टील प्लेटें आपस में जुड़कर एक युद्धपोत बनाती हैं। यदि किसी एक हिस्से की माप भी गलत हो जाए तो आगे पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है। इसलिए आधुनिक शिपयार्डों में मिलीमीटर स्तर की सटीकता रखी जाती है।
1: अच्छा, हम बार बार रडार, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दादाजी, क्या इन्हीं सब से जहाज कंट्रोल होता है?
0: एक तरह से हाँ बेटा, आधुनिक जहाजों में एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होता है। ये जहाज का नियंत्रण केंद्र होता है। यहीं से जहाज की दिशा, गति, मार्ग और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
1: मतलब ये बिल्कुल कार चलाने जैसा होता है?
0: हाँ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाज को चलाना कहीं अधिक जटिल होता है बेटा। समुद्र में कोई सड़क नहीं होती है, कोई लेन नहीं होती, इसलिए कप्तान को रडार, जीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट और संचार प्रणालियों की सहायता लेनी पड़ती है।
1: दादू, ये रडार आखिर काम कैसे करता है?
0: रडार बेटा रेडियो तरंगे भेजता है। जब ये तरंगे किसी जहाज, द्वीप या अन्य वस्तु से टकराती है तो वापस लौटती है। कंप्यूटर इन संकेतों का विश्लेषण करके वस्तु की दूरी और दिशा बता देता है, और इसी कारण रात, कोहरे या खराब मौसम में भी जहाज सुरक्षित रूप से मार्ग तय कर सकता है।
1: मतलब रडार समुद्र में जहाज की आंखों जैसा है।
0: बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही।
1: दादू, आज के जहाज पहले के जहाजों से बहुत अलग है।
0: बहुत अलग। पहले जहाजों में ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियां होती थी बेटा। आज डिजिटल नेविगेशन, आधुनिक रडार, उपग्रह संचार, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उन्नत सेंसर लगाए जाते हैं। यानी आधुनिक जहाज केवल समुद्र में चलने वाले पोत नहीं है, बल्कि तैरते हुए तकनीकी केंद्र बन चुके हैं बेटा।
1: और जीएसएल भी इसी बदलाव का हिस्सा है।
0: हाँ बिटिया, इसीलिए जीएसएल केवल जहाज नहीं बना रहा, बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री तकनीक को भी आकार दे रहा है।
1: दादू, आजकल स्टेल्थ शब्द भी बहुत सुनाई देता है, इसका क्या मतलब होता है?
0: स्टेल्थ का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे युद्धपोत दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई ना दे। इसके लिए जहाज की बाहरी बनावट, उसके कोण और कई विशेष पदार्थों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि रडार की तरंगें कम परावर्तित हों। इससे दुश्मन के लिए उसकी सही पहचान करना कठिन हो जाता है।
1: यानी ये युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो रहता है, लेकिन दुश्मन को उसका पता आसानी से नहीं चलता।
0: हाँ बेटा, यही कारण है कि आधुनिक नौसेनाओं में स्टेल्थ तकनीक को बहुत महत्व दिया जाता है। कई नए भारतीय युद्धपोत भी इसी सोच के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं।
1: दादू, इतने बड़े युद्धपोत में रडार, कंप्यूटर, संचार प्रणाली और इतने सारे उपकरण चलते रहते हैं, इन्हें बिजली कहाँ से मिलती है?
0: बिल्कुल सही सवाल है बेटा। युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता बिजली घर होता है बेटा।
1: ऐसा?
0: उसमें शक्तिशाली डीजल जनरेटर लगाए जाते हैं जो लगातार बिजली पैदा करते हैं। इसी बिजली से रडार, संचार प्रणाली, कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, हथियार प्रणालियां और अनेक अन्य उपकरण चलाए जाते हैं। आजकल कई आधुनिक युद्धपोतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी होती है जो जरूरत के अनुसार बिजली का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है।
1: वाह दादू, यानी समुद्र के बीच भी पूरा जहाज अपने दम पर चलता है।
0: हाँ बेटा, इसलिए युद्धपोत को समुद्र में कई दिनों या कई सप्ताह तक किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: अच्छा दादू, समुद्र में जब ज्वार आते हैं तब तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब इतना विशाल जहाज पलटता नहीं है?
0: देखो बेटा, यही तो नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर का कमाल है। जहाज का भार, उसकी चौड़ाई, गहराई और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का बहुत सावधानी से निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बेटा, जहाज के भीतर विशेष बैलास्ट टैंक बनाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है और वो ऊंची लहरों में भी स्थिर रहने की कोशिश करता है।
1: यानी युद्धपोत को तैराने और संतुलित रखने के पीछे केवल ताकत ही नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान भी काम करता है।
0: बिल्कुल बेटा, इसलिए जब हम किसी युद्धपोत को समुद्र में सहजता से आगे बढ़ते देखते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और डिजाइनरों की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता, बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय प्रतिभा का अद्भुत संगम होता है।
1: सो तो है दादाजी।
0: बिल्कुल बढ़िया। समुद्र में तैरता हुआ हर जहाज इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी और तकनीक का अद्भुत तालमेल होता है।
1: दादू, जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब क्या होता है?
0: फिर शुरू होती है स्टील कटिंग। विशाल स्टील प्लेटें शिपयार्ड में लाई जाती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उन पर खास कोटिंग की जाती है, फिर कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उन्हें जरूरी आकार में काटती हैं।
1: तो दादू, क्या पूरा जहाज एक साथ बनाया जाता है?
0: नहीं नहीं बेटा, यही सबसे रोचक बात है। जहाज छोटे छोटे ब्लॉकों में बनाया जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉकों से घर बनाते हैं ना। फिर इन्हीं विशाल ब्लॉकों को जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
1: पर दादू, इन ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता है?
0: वेल्डिंग द्वारा। वेल्डिंग जहाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है बेटा। एक मजबूत वेल्ड हजारों टन के जहाजों को मजबूती प्रदान करती है।
1: दादू, जीएसएल खासतौर पर गश्ती पोतों के लिए प्रसिद्ध क्यों है?
0: क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता विकसित की है। गश्ती पोत या पेट्रोल वेसल ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं, तस्करी रोकते हैं, खोज और बचाव अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं।
1: तो क्या ये युद्ध पोतों से छोटे होते हैं?
0: लेकिन ये बेहद तेज और चुस्त होते हैं बेटा। इनमें आधुनिक रडार, संचार प्रणाली और नेविगेशन उपकरण लगाए जाते हैं।
1: दादू, मैंने पढ़ा था कि जीएसएल स्टील और एल्यूमिनियम दोनों प्रकार के जहाज बनाता है, क्या ये बात सच है?
0: हाँ, सच है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। स्टील मजबूत होता है जबकि एल्युमिनियम हल्का होता है। हल्का जहाज अधिक गति हासिल कर सकता है, इसलिए जहाज के उपयोग के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है।
1: दादू, आपने कहा था कि जीएसएल की अपनी डिजाइन क्षमता है, कहा था कि नहीं?
0: हाँ हाँ बेटा, कहा था।
1: तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: क्योंकि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि जहाजों का डिजाइन भी अपने देश में ही विकसित किया जाए तो विदेशी निर्भरता कम होती है, साथ ही जरूरत के मुताबिक नए बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
1: दादू, क्या जीएसएल में अनुसंधान भी होता है?
0: हाँ बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास किसी भी आधुनिक संस्थान की आत्मा होता है। यही नई तकनीकें विकसित होती हैं, नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी खोजे जाते हैं।
1: दादू, ये कितना सही है कि आज का विद्यार्थी ही कल का जहाज डिजाइनर, नौसेना वैज्ञानिक या समुद्री अभियंता बन सकता है।
0: देखो बिटिया, एक आधुनिक शिपयार्ड वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसा होता है, जहां हर दिन कुछ नया सीखा और बनाया जाता है।
1: दादू, इसका मतलब यही कारण है कि जीएसएल अन्य कई शिपयार्डों से थोड़ा अलग दिखाई देता है।
0: तुमने बिल्कुल सही समझा बेटा। जहां अधिकांश लोग इसे केवल जहाज निर्माण से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण, सिमुलेशन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दादू, ये सिमुलेशन क्या होता है?
0: मान लो कोई नौसैनिक पहली बार समुद्र में जा रहा है, क्या उसे सीधे तूफान के बीच भेज देना चाहिए?
1: ना ना बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दादाजी।
0: ठीक यही कारण है कि सिमुलेटर बनाए जाते हैं। सिमुलेटर ऐसी व्यवस्था होती है जहां वास्तविक परिस्थितियों जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, आग लगने की स्थिति, पानी भरने की स्थिति और आपातकालीन बचाव अभियान, इन सब का अभ्यास पहले से ही कराया जाता है।
1: मतलब जैसे एरोप्लेन के पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं?
0: बिल्कुल वैसा ही बेटा। और जीएसएल ने ऐसे कई विशेष प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित किए हैं।
1: दादू, यदि समुद्र में जहाज को नुकसान पहुंच जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाता है?
0: उसके लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चे। जीएसएल द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर एशिया में अपनी तरह की अनूठी सुविधाओं में से एक माना जाता है।
1: और इसमें होता क्या है?
0: कल्पना करो कि किसी जहाज में आग लग गई है, ठीक है? अब उसके किसी हिस्से में पानी भरने लग गया है। नौ सैनिकों को तुरंत निर्णय लेना होता है, कहां जाना है, किस वाल्व को बंद करना है, किस उपकरण का उपयोग करना है। ये सब प्रशिक्षण इसी प्रकार के सिमुलेटर में कराया जाता है।
1: समझ गए दादू। अच्छा, आपने एक बार ONGC के लिए भी किसी विशेष सुविधा का उल्लेख किया था।
0: हाँ हाँ बेटा, ये सुविधा समुद्र के बीच तेल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। समुद्र शांत हो तो काम आसान लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
1: सही कहा दादू आपने, कभी तूफान आ जाता है, कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं और कभी अचानक आपात स्थिति पैदा हो जाती है।
0: और ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए GSL ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है।
1: समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा, ये क्या है दादू?
0: हाँ हाँ बेटा, यहाँ कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि संकट की स्थिति में स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, लाइफ राफ्ट तक कैसे पहुँचना है, समुद्र में गिर जाने पर क्या करना है और बचाव दल आने तक धैर्य कैसे बनाए रखना है।
1: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, ये GSL का संबंध विमानों से भला कैसे जुड़ गया?
0: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। गोवा में स्थित INS हंसा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु स्टेशन है। यहाँ नौसेना के विमान और पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। GSL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से एक विशेष शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी के निर्माण में योगदान दिया।
1: शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी?
0: हाँ हाँ, विमान वाहक पोत पर विमान उतारना और उड़ाना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है बेटा।
1: सो तो है।
0: इसलिए पहले जमीन पर ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो विमान वाहक पोत जैसा महसूस हो। यही पायलट अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक समुद्री अभियानों में भाग लेते हैं।
1: वाव दादू, मतलब GSL ने केवल जहाज ही नहीं बनाए बल्कि नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण में भी बड़ा योगदान दिया है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा दादू, आपने बताया था कि गोवा शिपयार्ड में आधुनिक शिप लिफ्ट सुविधा भी है, ये क्या होती है?
0: ये बहुत रोचक तकनीक है बिटिया। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है ना, वैसे ही शिप लिफ्ट विशाल जहाजों को पानी से बाहर निकालने और वापस पानी में उतारने का काम करती है।
1: इतने बड़े जहाज को दादू लिफ्ट कैसे उठा सकती है?
0: अरे बुद्धू, शिप लिफ्ट साधारण लिफ्ट थोड़ी होती है। ये स्टील के विशाल प्लेटफॉर्म, शक्तिशाली मोटरों और कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से संचालित होती है। जब जहाज प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाता है तब कई सिंक्रोनाइज्ड विंच और केबल एक साथ काम करते हैं और पूरे जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं।
1: लेकिन दादू, जहाज को पानी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
0: अरे बेटा, जहाज के निचले हिस्से की मरम्मत, पेंटिंग, निरीक्षण और रखरखाव पानी के भीतर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसे बाहर निकालना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: पहले इसके लिए मुख्यतः ड्राई डॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक इस प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाती है।
1: तो इससे भी समय की बचत होती होगी।
0: हाँ, जहाज को अपेक्षाकृत कम समय में उठाया जा सकता है। इसके बाद उसे विशेष रेल प्रणाली या ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरम्मत क्षेत्र तक ले जाया जाता है। इससे एक ही समय में कई जहाजों पर काम करना संभव हो जाता है।
1: अब समझ में आया दादू मुझे कि जहाज बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें वर्षों तक सुरक्षित और सक्षम बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
0: तभी तो बिटिया, और यही काम आधुनिक शिपलिफ्ट जैसी तकनीकें आसान बनाती हैं।
1: दादू, ये GSL और किस तरह के जहाज बनाता है?
0: इसने तेज गति वाली इंसेप्टर बोट्स भी बनाई है। इनका उपयोग तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कोई संदिग्ध नाव समुद्री सीमा में प्रवेश करे तो यही बोट्स तुरंत उसका पीछा कर सकती है।
1: मतलब ये समुद्र की पुलिस कार जैसी होती है।
0: बिल्कुल सही तुलना की तुमने बेटा।
1: दादू, इतने वर्षों की यात्रा के बाद GSL का भविष्य कैसा दिखता है?
0: बहुत उज्जवल बेटा। आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में GSL जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: हाँ दादाजी, सही कहा आपने। भविष्य में भारत को अधिक आधुनिक गश्ती पोतों, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं, विशेष प्रशिक्षण प्रणालियों और नई समुद्री तकनीकों की जरूरत होगी, और इन सब के विकास में GSL महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
0: हाँ बेटा, भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्मार्ट सेंसर का उपयोग और बढ़ेगा। जहाज अपने कई कार्य स्वयं कर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता बहुत बेहतर होगी। पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ता जाएगा और संभव है कि कुछ विशेष जहाजों में मानव हस्तक्षेप पहले की तुलना में बहुत कम रह जाए।
1: दादाजी, यानी समुद्र की दुनिया भी तेजी से बदल रही है।
0: हाँ बिटिया, और GSL जैसे संस्थान उसी भविष्य की तैयारी आज से कर रहे हैं। ज्वारी नदी के किनारे शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है बेटा। और शायद इसी कारण GSL केवल एक शिपयार्ड नहीं बल्कि भारत की समुद्री भविष्य का निर्माता भी है।
1: चलिए दादाजी, अब अपन घर चलते हैं। आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ।
0: अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह वाह, चलो चलो चलो चलो।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज बात हो रही थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL की, एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए आपका अपना रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: देश के संस्थान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कलक लता बड़ुआ के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी।
3: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है दो महान क्रांतिकारी नेताओं कनकलता बरुआ और कन्हैयालाल भट्टाचार्य जी पर। असम के लोगों ने अगस्त क्रांति में खुलकर भाग लिया था। पहले तो उनका आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक और केवल प्रदर्शन तक ही सीमित था, लेकिन जब पुलिस और फौज ने उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो असमिया लोग भी भड़क उठे और उनके सत्याग्रह आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया। श्रोताओं, असम की क्रांति की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, मगर फिलहाल वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं पहले ये देशभक्ति

असम के गोपुर गांव की जनता अपने गांव के थाने पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए बढ़ चली। लगभग 5,000 ग्रामीण उस जुलूस में शामिल थे। उस जुलूस में स्त्रियां भी थीं और बच्चे भी शामिल थे। बढ़ता हुआ ये जुलूस थाने के सामने पहुंच गया। थाने पर पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता था। तब जुलूस दो भागों में विभक्त हो गया और दो दिशाओं से नाले को पार करके जुलूस फिर एक होकर थाने के फाटक की ओर आगे बढ़ने लगा। जुलूस के आगे कनकलता बरुआ नाम की एक 14 वर्ष की बालिका तिरंगा झंडा लेकर नेतृत्व कर रही थी। उसे रोकने के लिए थानेदार भी अपने सिपाहियों के साथ फाटक के पास पहुंच गया। तब कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा। श्रोताओं, कनकलता के साहस की कहानी आगे बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल सुनते हैं ये देशभक्ति रचना।

कनकलता बरुआ ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग तो हमारे भाई हैं, हमें रोकने के स्थान पर आप लोग भी हम में सम्मिलित हो जाइए, हम सब लोग मिलकर थाने पर राष्ट्रीय झंडा लगाएंगे। लेकिन थानेदार एक बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, वो किसी को भी थाने के अंदर नहीं आने देगा। तब इस पर कनकलता भड़क गई और कहा, पुलिस स्टेशन तो जनता की संपत्ति होती है, जनता की संपत्ति के रक्षक यदि जनता का कहना नहीं मानेंगे तो जनता उन्हें हटा देगी और अपनी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेगी। और वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गईं। थानेदार को ललकारते हुए कनकलता फाटक के अंदर जाने लगी। तब कनकलता की जबरदस्ती देखकर थानेदार ने उन पर गोली चला दी और कनकलता वहीं शहीद हो गई। कनकलता को गिरते हुए देखकर मुकुंद काप्ता नाम के एक नौजवान ने उनके हाथ से झंडा ले लिया और वे आगे बढ़ने लगे। तब मुकुंद काप्ता को भी गोली मार दी गई और वे शहीद हो गए। अब तो जनता के धैर्य का बांध टूट गया और कई तरफ से लोग थाने के अंदर एक साथ पहुंचने लगे। तब पुलिस वालों ने भी अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। लोग गोलियां खाकर गिरते रहे और आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक दल थाने की इमारत पर चढ़ने में सफल हो गया और वहां उसने शान के साथ तिरंगा झंडा लगा दिया। इस संघर्ष में लगभग 60 व्यक्ति शहीद हुए। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारी आजादी के दीवाने क्रांतिकारी, जिन्होंने अपनी जान न्योछावर कर दी।

अब चर्चा करते हैं एक और क्रांतिकारी नेता कन्हाई लाल भट्टाचार्य जी की। न्यायमूर्ति आर आर गार्लिक उस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे जिसने 2 फरवरी 1931 को दिनेश गुप्त को फांसी का दंड सुनाया था। दिनेश गुप्त ने कलकत्ता में पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर सिंपनसन को उसके कार्यालय में ही गोली से भून डाला था। वही न्यायमूर्ति गार्लिक महोदय 27 जुलाई 1931 को अपने इजलास में एक मामले की सुनवाई में व्यस्त थे। वे ये देख नहीं पाए कि 20 वर्ष का एक दुबला पतला युवक कब एक दरवाजे से इजलास में प्रविष्ट हुआ और गवाह के कटघरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और न्यायमूर्ति गार्लिक को निशाना बनाकर 2 गोलियां उन पर छोड़ दी। श्रोताओं, न्यायमूर्ति पर हमले की चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, मगर फिलहाल वक्त है कार्यक्रम में एक देशभक्ति गीत का।

पहली गोली तो खाली चली गई, पर दूसरी गोली न्यायमूर्ति महोदय के मस्तक पे लगी और वे अपनी कुर्सी से वहीं लुढ़क गए। इजलास में सीआईडी का एक सिपाही नागरिक वेश में उपस्थित था। उसके पास भी रिवॉल्वर था और उसने अपनी गोली उस युवक पर छोड़ दी, पर उसका निशाना चूक गया। अब युवक ने एक गोली उस सिपाही पर छोड़ी जो उसके कंधे पर लगी और वो भूमि पर गिर गया। एक सार्जेंट भी अदालत में पहले से ही उपस्थित था। उसने अपने रिवॉल्वर से दो गोलियां उस युवक पर दागी। दोनों गोलियां उसके शरीर में ही लगीं और वो युवक भूमि पर गिर गया। घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। न्यायमूर्ति गार्लिक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। न्यायमूर्ति गार्लिक की हत्या करने वाले युवक की जेब में एक कागज पाया गया, जिस पर लिखा था, दिनेश गुप्त को अन्यायपूर्वक फांसी का दंड देने का पुरस्कार मृत्यु से प्राप्त कीजिए। श्रोताओं, मृत युवक का चित्र अखबारों में छपवाकर उसकी सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तब मालूम चला कि उनका वास्तविक नाम कन्हैयालाल भट्टाचार्य था और वे 24 परगना के माजिलपुर के रहने वाले थे। तो श्रोताओं, ऐसे थे हमारे आजादी के वीर क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज के कार्यक्रम में हमने स्वाधीनता संग्राम सेनानी कनकलता बड़ुआ के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

0: रानू खान, वो पहाड़ी विद्रोही जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को 10 साल तक छकाया। क्या आप जानते हैं कि एक दशक से अधिक समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसे विद्रोही नेता द्वारा व्यवस्थित रूप से अपमानित किया गया जिसे वे उपहास में पहाड़ी कहते थे। ये रानू खान थे, चकमा लोगों के शानदार जनरल और दीवान, जिन्होंने 1776 और 1787 के बीच दुर्गम चटगांव हिल ट्रैक्ट्स को ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा के कब्रिस्तान में बदल दिया था। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब कंपनी ने राजस्व की अपनी अतृप्त भूख के कारण चकमा राजा की उन पैतृक जमीनों पर कर लगाने की कोशिश की जो पीढ़ियों से कर मुक्त थी। रानू खान ने केवल विरोध नहीं किया, उन्होंने प्रतीकात्मक चुनौती दी। जब कंपनी ने उन्हें नोटिस देने के लिए सिपाही भेजे तो उन्होंने सिपाहियों को पिटवाया और उनके आधिकारिक सरकारी वारंट परवाना को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। 1777 की शुरुआत में कंपनी ने इस अशांत विद्रोही को पकड़ने के लिए 50 नियमित सिपाहियों का एक दल भेजा। उन्हें त्वरित जीत की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन पर जनजातीय सशस्त्र समूहों और भयंकर कुकी पहाड़ी लड़ाकों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। घने जंगलों ने ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण को पूरी तरह बेअसर कर दिया। बड़ा और सुदृढ़ सैन्य दल इस हेतु तैनात किए जाने के बाद भी ब्रिटिश सेना रानू खान को नहीं पकड़ सकी। वो बस आंतरिक पहाड़ियों के उस अदृश्य क्षेत्र में गायब हो गए जहां कंपनी का अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि रानू खान कंपनी की नाक के नीचे अपना राज्य चलाने में कैसे सफल रहे? उन्होंने अपने निशान स्वतंत्रता के झंडे फहराए और स्थानीय जमींदारों को अंग्रेजों को भुगतान करने के बजाय उन्हें नजर यानी औपचारिक कर देने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी जमीनों पर काम करने के लिए कंपनी के रैयतों यानी किसानों को पकड़ लिया, जिससे प्रभावी रूप से ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता छीन ली गई। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच व्याप्त छिपाने की संस्कृति ने इस अपमान को और बढ़ा दिया। चटगांव के स्थानीय प्रमुख फ्रांसिस लॉ ने महीनों तक एक शांत दर्शक के रूप में इस अराजकता को देखा। उन्हें डर था कि किसी हलचल की सूचना देने से वे कलकत्ता में अपने वरिष्ठों की नजर में अक्षम लगेंगे, इसलिए उन्होंने तब तक विद्रोह के पैमाने के बारे में झूठ बोला जब तक कि राजस्व का नुकसान इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसे छिपाना असंभव हो गया। रानू खान जानते थे कि अंग्रेज केवल धोखा दे रहे हैं। उन्होंने बाद में कंपनी अधिकारियों से कहा कि वे उनकी लंबी निष्क्रियता को सरकार की कमजोरी के संकेत के रूप में देखते हैं। 10 वर्षों में कंपनी ने 3 अलग अलग सैन्य अभियान चलाए, लेकिन हर बार रानू खान ने पहाड़ियों की गतिशीलता का उपयोग करके उन्हें छकाया। अंततः अंग्रेज युद्ध के मैदान में इस पहाड़ी को हरा नहीं सके। उन्होंने राजनीतिक तोड़फोड़ का सहारा लिया। उन्होंने चकमा राजा जान बख्श खान को आश्वस्त किया कि रानू खान बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और उनका सिंहासन छीन सकते हैं। 1787 में राजा ने अपने जनरल के पीठ पीछे कलकत्ता में एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए। रानू खान, वो व्यक्ति जिसने एक दशक तक ब्रिटिश वारंट फाड़े थे और उनके बेहतरीन सिपाहियों को पछाड़ा था, पहाड़ियों में ओझल हो गए।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश।

ढाका की आपूर्ति नावें और कैप्टन कॉक्स की त्रासदी। क्या आप जानते हैं कि औपनिवेशिक इतिहास की सबसे दुखद मानवीय विफलताओं में से एक संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि आपूर्ति वाली नावों के एक ऐसे बेड़े के कारण हुई थी जिसे स्थानीय नौकरशाही ने खोजने से ही इनकार कर दिया था। ये कहानी है ढाका की आपूर्ति नावों की और उस व्यक्ति की जिसने अपने ही सहयोगियों की टाल मटोल वाली नीति से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। वर्ष 1799 था। चटगांव के दक्षिणी जंगलों में एक भयावह मंजर था। बर्मी हिंसा से बचकर भागे 25,000 से अधिक अराकानी शरणार्थी भूख से मर रहे थे। इस संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार कर दिया और कैप्टन हीराम कॉक्स को विशेष आयुक्त नियुक्त किया। वो प्रोकंसुलर शक्तियों के साथ आए थे और उन्हें भूखों को खिलाने के लिए स्थानीय खजाने से असीमित धन निकालने का अधिकार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में इस बाहरी के हस्तक्षेप पर कैसी प्रतिक्रिया दी? उन्होंने सक्रिय असहयोग का अभियान छेड़ दिया। जब कॉक्स ने राहत के लिए 80,000 रुपए मांगे तो चटगांव के कार्यवाहक कलेक्टर थॉमस पाउनी ने खजाना खोलने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्थापित प्रक्रिया की आड़ ली और 3 प्रतियों में कागजी कार्रवाई की मांग की। हताश होकर कॉक्स ने अनाज के लिए पड़ोसी जिलों ढाका और त्रिपुरा की ओर देखा, लेकिन वहां की नौकरशाही भी उतनी ही संवेदनहीन थी। ढाका और त्रिपुरा के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे, जबकि शरणार्थी भोजन के अभाव में प्रतिदिन मर रहे थे। इस बेतुकेपन का चरम तब आया जब आखिरकार चावल की व्यवस्था हो गई। आपको लगेगा कि संकट टल गया, लेकिन स्थानीय नौकरशाही ने अचानक दावा किया कि उन्हें नावें नहीं मिल रही हैं। विशाल नदी प्रणालियों वाले इस क्षेत्र में ढाका और चटगांव के अधिकारियों ने ये तर्क दिया कि उपयुक्त परिवहन नावें उपलब्ध नहीं थीं। क्या आप जानते हैं कि इस दैनिक प्रतिरोध का क्या परिणाम हुआ? जनवरी 1800 तक केवल 16,000 मन चावल ही बस्ती तक पहुंच सका, जो कॉक्स द्वारा मांगी गई मूल मात्रा के 1/4 से भी कम था। जो थोड़ी बहुत सहायता पहुंची उसे भी भ्रष्ट अधिकारियों ने चुरा लिया। कार्यवाहक गवर्नर जनरल ने केवल भारी खर्च और स्थानीय अधिकारियों की परेशानी को देखा और मिशन को विफल घोषित कर दिया। उन्होंने कॉक्स को ये कहते हुए वापस बुला लिया कि वे स्थानीय सत्ता के काम में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रणालीगत तोड़फोड़ से कॉक्स का मनोबल और स्वास्थ्य दोनों टूट गए। वे वहां की जहरीली जलवायु में बीमार पड़ गए और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। आज कॉक्स बाजार शहर उनके एकमात्र स्मारक के रूप में खड़ा है, लेकिन उनकी कहानी लिमिटेड राज का एक डरावना उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि शुरुआती ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने निजी स्वार्थ की रक्षा करने वाले कुछ मुट्ठी भर नौकरशाह किसी भी दुश्मन सेना से कहीं अधिक घातक हो सकते थे। ढाका की लापता नावें समुद्र में नहीं खोई थीं, उनका गला लाल फीता शाही ने घोंट दिया था।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य कुंचन। इस कार्यक्रम में आज हम आपको कविता रश्मि रथी का पाठ सुनवाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम का 14वां भाग सुनेंगे।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो काव्य भूमि है जहां ऋषियों की वाणी की गंभीरता है, जहां इतिहास के पन्नों से उठकर पात्र हमारे सामने जीवंत तो हो जाते हैं, जहां वीरता केवल रणभूमि में नहीं बल्कि उस क्षण में दिखाई देती है जब मनुष्य अपने भीतर के तूफान से संघर्ष करता है।
4: श्रोताओं, पिछले प्रसंगों में हमने सुना उस हृदय स्पर्शी मिलन को जहां गंगा की पावन धारा साक्षी बनी माँ कुंती और सूर्य पुत्र कर्ण के संवाद की। एक ओर थी वर्षों से छिपी हुई ममता की पुकार, तो दूसरी ओर था उस पुत्र का मौन आक्रोश जिसने जीवन भर पहचान के लिए संघर्ष किया। कुंती ने कर्ण के सामने जन्म का वह सत्य रखा जिसे समय ने वर्षों तक अपने आंचल में छिपा कर रखा था, परंतु कर्ण के लिए जीवन का अर्थ केवल जन्म से तय नहीं था, उसके लिए राधा का स्नेह माँ का आशीर्वाद था, दुर्योधन की मित्रता उसका ऋण थी और दिया हुआ वचन उसके जीवन का धर्म।
3: श्रोताओं, कभी कभी भाग्य मनुष्य को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां एक ओर रक्त का संबंध पुकारता है और दूसरी ओर आत्मा का संकल्प। कर्ण भी उसी अग्निपथ पर खड़ा है जहां आंसुओं की धारा है पर कदमों में विचलन नहीं। सूर्यांश लिए वो रथी खड़ा है काल के रणांगन में, मौन अग्नि जलती रहती है उसके अंतर मन के स्पंदन में। वज्र सा अटल, करुणा सा कोमल, ये कैसा तेज अपार है। कर्ण नहीं केवल एक कथा, वो मानवता का विस्तार है, वो मानवता का विस्तार है।
4: आइए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं पंचम सर्ग के भाग 5 की ओर। आइए सुनते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर रचना रश्मि रथी के पंचम सर्ग के भाग 5 का काव्य पाठ।
5: सोचो, जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती पनीपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद व्युक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती, भोगती राज सुख रहकर नहीं मैल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में, लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी, मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है, जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां जाऊं, छीना था जो सौभाग्य निदारूढ़ होकर, देने आई हो से आज तुम रोकर, गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है, खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे। है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीपिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वो नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा।
3: मित्रों, कर्ण के शब्दों में कठोरता दिखाई देती है, पर उस कठोरता के भीतर एक ऐसा हृदय धड़क रहा है जिसने जीवन भर अपनापन खोजा। वो कुंती को दोष देता है, पर उसका उद्देश्य केवल पीड़ा व्यक्त करना नहीं, बल्कि उस सत्य को सामने रखना है जिसे समय ने दबा दिया था।
4: यही तो कर्ण की वेदना है, उसे राज्य का लोभ नहीं, उसे तो अपने बीते हुए बचपन की तलाश है। वह उस गोद को खोज रहा है जो उसे कभी मिली ही नहीं। परंतु अब समय बीत चुका है, नदी का जल लौटकर स्रोत तक नहीं आता, उसी प्रकार जीवन के बीते हुए क्षण कभी वापस नहीं आते।

0: संबंध नहीं जीवन का उपकार है। आइए श्रोताओं, चलते हैं गंगा तट पर, जहां दिशाएं मौन हैं और समय जैसे अपनी गति रोककर उस संवाद को सुन रहा है। कर्ण कुंती से कह रहे हैं,
1: मैं खूब समझता हूं कि नीति ये क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है, जोड़ने नहीं पिछुड़े व्युक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से, सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है, अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो, अन्यथा स्नेह की वेगमयी ये धारा तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा, भुज बड़ा खींचने मुझे ना क्यों आई थी, पहले क्यों ये वरदान नहीं लाई थी, केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना, ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को, लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ, दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को, कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान ना होना उससे कभी उड़न है, छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा, हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूं मैं, चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं, अर्पित प्रसून के लिए ना यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ।
0: राधेय मौन हो रहा व्यथा निज कहके, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के, कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी, अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे, थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता ना कोई खग था, झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी।
2: श्रोताओं, इस मार्मिक संवाद में कर्ण का व्यक्तित्व मानो एक विराट पर्वत की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सत्य जान लेने के बाद भी उसका हृदय कर्तव्य से विचलित नहीं होता। सचमुच यह क्षण केवल माँ और पुत्र का मिलन नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहन परीक्षा है। एक और मातृत्व की पीड़ा है, जो अपने ही पुत्र को पहचानने में देर कर बैठी, और दूसरी ओर कर्ण की वह अद्भुत महत्ता जो व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य और मित्रता को निभाने का संकल्प लेती है। दिनकर जी ने इस दृश्य को जिस संवेदना और गरिमा से उकेरा है, वह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के महान पात्र केवल युद्धों से नहीं बल्कि अपने नैतिक निर्णयों से अमर होते हैं।
0: माँ की पीड़ा, पश्चाताप और विवशता से भरी हुई कुंती मानो कर्ण से कहना चाह रही हो,
3: आज तुम्हारे शब्दों में जो अग्नि है उसका ताप मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे मौन ने तुम्हारे जीवन में अंधकार बोया था, पर क्या उस क्षण मेरी आत्मा भी नहीं रोई थी? समाज के भय ने मेरे कदम बांध दिए थे पुत्र, मैं माँ होकर भी उस समय माँ का धर्म निभा ना सकी, जिसे अपनी छाती से लगाना था उसे जलधारा के भरोसे छोड़ आई। यह पीड़ा मेरे हृदय में युगों से धधकती रही है। तुम कहते हो कि समय लौटता नहीं, यह सत्य है, पर क्या माँ का हृदय कभी अपने खोए हुए अंश को भूल पाता है? तुम्हें पाने की चाह आज नहीं जागी कर्ण, यह चाह तो उस दिन से जीवित थी जिस दिन मैंने तुम्हें अपने हाथों से दूर किया था। तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा तेज संसार देख रहा है, पर मेरी आंखों के लिए तुम आज भी वही बालक हो जिसे कभी माँ की गोद न मिल सकी।
2: श्रोताओं, अब ये संवाद अपनी अगली दिशा की ओर बढ़ेगा, जहाँ माँ की पुकार और पुत्र का संकल्प एक और गहरी परीक्षा से गुजरेंगे। आइए सुनते हैं पंचम सर्ग के भाग 6 का काव्य पाठ।
0: इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे, खड़े शिलावत मूक भाग्य के मारे, था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में, क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी, आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने।
3: आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने, पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा, तब जाती हूँ क्या और कर सकूंगी मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं, जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर, बेटा सचमुच बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सापिनी हूँ मैं, मुझसी प्रचंड अघमय कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी, तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे, यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ, अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा, पेटिका बीच मैं डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको, वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, ओ शिलाभूत सर्पिणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रेकर्ण सुनाओ व्यथा कहाँ तक तुझको, लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है, धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी, धिक्कार ग्लानी कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही, थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर मैं तेरे आगे, पर कदम उठा पाई न ग्लानी में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर, लेकिन जब गुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी, सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी, इसीलिए शक्तियां मन की सभी संजो कर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर, आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने, सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है, अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू, कढ़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई थी छिन्न जीवन में, थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा पांच ही सुतों की माता, अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी, था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है, थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली, पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख ना पाकर, फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने, अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं, ममता जम कर हो गई शिला जो मन में, जो क्षरी फूट कर सूख गया था तन में, वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह राह हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानी की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे।
0: श्रोताओं, इस प्रसंग में कुंती कोई महारानी नहीं रह जाती, न हस्तिनापुर की राजमाता, न पांडवों की जननी। यहां वो केवल एक ऐसी मां है जिसकी स्मृतियों में वर्षों से एक अधूरा रुदन बंद पड़ा था। दिनकर जी ने कितनी करुणा से उस अपराध बोध को स्वर दिया है। जीवन भर यश प्रतिष्ठा और कुल मर्यादा का आवरण ओढ़े रहने वाली कुंती आज स्वयं अपने ही निर्णयों के कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। समय के साथ घाव भर जाते हैं ये कहा जाता है, पर कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से भरते हुए दिखते हैं और भीतर निरंतर रिसते रहते हैं। कर्ण को पेटिका में रखकर जलधारा की हवाले करने का वो क्षण मानो आज भी उनकी आंखों में ज्यों का त्यों ठहरा हुआ है। वो शिशु की टुकुर टुकुर देखती हुई आंखें, वो मौन प्रश्न, वो असहाय पुकार वर्षों बाद भी कुंती के हृदय में शूल बनकर चुभ रही है। सच ही तो है, समय बीत जाता है पर मां का हृदय अपने अपराधों की राख में भी अंगार बचाए रखता है।
2: कितना मार्मिक दृश्य है ये। एक और सूर्य पुत्र कर्ण, जिसने जीवन भर माँ की गोद का अभाव सहा, और दूसरी ओर कुंती, जिसने जीवन भर उस रिक्त गोद का दंश झेला। लगता है जैसे नियति स्वयं उनके बीच खड़ी होकर कह रही हो। कुछ बिछोह ऐसे भी होते हैं जिन्हें समय नहीं भरता, वे केवल आंसुओं की भाषा में अपना इतिहास लिखते हैं। यही इस प्रसंग की आत्मा है और यही दिनकर जी की लेखनी का चमत्कार भी।
0: मां ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, होठ ही कंटकित पुलक कर्ण की काया, संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, वह बह चला स्निग्ध प्रस्वण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे, फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर।
1: मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर, पर हाय स्वत्व मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले ना सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी ना दे सकूंगा, कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो, केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो ये कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर, विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक धैर्य के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वो प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट हो जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतेव मांग लेता, बदले में तुमको चार कर्ण देता। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय, सोच ये मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में।
3: रे हठी, दिया क्या तूने निज को लेकर, ले नहीं किया तूने, बनने आई थी छह पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता।
2: उस निस्तब्ध क्षण में मानो समय स्वयं ठहर सा गया था। वर्षों से अपराध बोध की अग्नि में जलती कुंती के हृदय की जमी हुई ममता आज अचानक पिघल उठती है। अपने ही त्यागे हुए पुत्र को सामने देखकर वह कुरुकुल की रानी नहीं रह जाती, बल्कि एक साधारण असहाय माँ बन जाती है, जो केवल अपने बेटे को छाती से लगाकर रो लेना चाहती है। कर्ण भी उस आलिंगन में पहली बार मातृत्व की ऊष्मा का अनुभव करता है, जैसे तपती धरती पहली वर्षा की बूंदों से भीगकर शांत हो जाती है। उस क्षण में वर्षों का वियोग, पश्चाताप और प्रेम एक ही धारा बनकर बहने लगते हैं। सूर्य की किरणें जैसे कर्ण के पैरों पर ऐसे दिख रही हैं जैसे क्षमा मांग रही हों, और कर्ण मानो कह रहे हों,
1: हे सांध्य गगन, हे मौन बहती गंगा, तुम ही बताओ इस अस्तित्व का अंतिम सत्य क्या है, जिसे विधाता ने हमेशा पराया रखा, आज अंत समय में उसे अपना बनाकर नियति ने कैसा क्रूर न्याय किया है। जीवन की इस ढलती सांझ में मैं अपने ही वजूद के खंडरों पर खड़ा होकर सोचता हूं कि मनुष्य वास्तव में क्या लेकर आता है और क्या खो देता है। गंगा की इन लहरों की तरह समय भी बस बहता चला जाता है, पीछे छोड़ जाता है तो केवल यादों की सूखी रेत, जिसे जन्म की पहली भोर में त्याग दिया गया हो उसके लिए जीवन की इस सांध्य बेला में ममता के इस अचानक स्पर्श का क्या मोल। नियति ने मेरे हाथों में देने के लिए हमेशा युद्ध और अकेलेपन का विष ही चुना, और आज जब मैं उस विष को अमृत समझकर पीने चला हूं, तब मुझसे मेरी ही मृत्यु का अधिकार मांगा जा रहा है। हे डूबते सूर्य, तुम साक्षी रहना, कर्ण संसार से हार कर नहीं बल्कि स्वयं को जीत कर जा रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय इतिहास को जीतना नहीं बल्कि अपनी ही नियति के इस अंतहीन सन्नाटे को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेना है।
2: श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में दिनकर जी ने वात्सल्य, वेदना और धर्म के ऐसे सूक्ष्म तार छेड़े हैं कि शब्द पढ़ते नहीं हृदय में उतरते चले जाते हैं। अब ये कथा अपने अगले और अंतिम भाव विस्तार की ओर बढ़ रही है। अभी बहुत कुछ शेष है, कुछ अनकहे प्रश्न, कुछ अधूरे उत्तर और एक ऐसा निर्णय जो आने वाले महायुद्ध की दिशा तय करेगा। अगले भाग में अब हम पंचम सर्ग के अंतिम भाग 7 की तरफ चलने वाले हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। चलते चलते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति और लेखन किया दीपक नेमा ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना,
0: मैं संदीप शर्मा,
3: अदिति
4: और मैं दीपक नेमा।
2: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा लेती है यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
5: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
6: काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सेवा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत। शाम 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम आज समर्पित होगा श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर। शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें आज का विषय होगा पौराणिक कथाओं का महत्व। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। उसके बाद शाम 7 बजे टेक गुरु कार्यक्रम में आज का विषय होगा दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। इस विषय पर डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से फराज फैयाज की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आज का विषय होगा नेवी और एयरफोर्स की कार्यप्रणाली। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा और इनसे बातचीत करेंगी अदिति गौड़। रात्रि के 8 बजे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर जानकारी प्राप्त करेंगे। रात्रि के 8:30 पर कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। आज का कार्यक्रम स्वाधीनता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के जीवन पर केंद्रित होगा। और रात्रि के 9:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन, जिसमें आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत और अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।
5: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए आज का भारत भारती कार्यक्रम। लेकर आई हूँ मैं आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं साबिर खान और सबरस का राजस्थानी लोक गायन।

मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे जेरे मेरे।

देखिए खुदा से एक इश्क है कि प्रीत करे सो ऐसी कर जैसे करे कपास, कपास बोलते हैं कपड़े को, कि प्यार करो तो ऐसे करे जैसे कोई करे कपास, जैसे कपड़ा हमसे प्यार करता है, कि प्रीत करे सो ऐसी करे जैसे करे कपास, कि जीते जी तो तन ढके मर ना छोड़े साथ। ये मोहब्बत है खुदा से।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने साबिर खान एंड सबरस का राजस्थानी लोक गायन सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शिकारी राजकुमार।

मई का महीना और मध्याह्न का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी, इसलिए उनमें शील न था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थर थर कांप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरन के पीछे उन्मत्त भाव से घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ। किंतु मृग भी ऐसा भागता था मानो वायु वेग से जा रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पद पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही हो। घोड़े के नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे और अश्वारोही के सारे शरीर का रुधिर उबल सा रहा था। किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर न देता था कि वो अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ईख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने पड़े और तुरंत ही सपने की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ही ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर से कूदना मानो मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरन का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने करुणा भरी दृष्टि चारों ओर फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु दृष्टि गोचर होती थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक से गोली क्या छूटी मानो मृत्यु ने एक महाभयंकर जय ध्वनि के साथ अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरन भूमि पर लोट गया। मृग पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वारोही की भयंकर और हिंसाप्रिय आंखों से प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य साधन कर लिया। उसने उस पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख से भोगेंगे। जब तक वो इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान न आया। किंतु जो ही उसका ध्यान उधर से फिरा, वो उष्णता से वेवल हो उठा और करुणापूर्ण आंखें नदी की ओर डाली। लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई भी मार्ग दिखाई न पड़ा और न ही कोई वृक्ष दिख पड़ा जिसकी छांव में जरा विश्राम करता। इसी चिंतावस्था में एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कगारे के ऊपर आया और अश्वारोही के सम्मुख खड़ा हो गया। अश्वारोही उसे देखकर बहुत अचंभित हुआ। नवागंतुक एक बहुत ही सुंदर और हष्ट पुष्ट मनुष्य था। मुख के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता देते थे। वो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लगा। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई पड़ता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा न रही। उसने देखा कि साधु से पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हां, मैं भी यही ख्याल करता हूं। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा, लेकिन उसके पीछे आज बहुत हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दया पूर्वक कहा, निसंदेह है, तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुख लाल हो रहा है और घोड़ा भी बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल बेपरवाही से दिया, मानो उसे इसकी कुछ भी चिंता न थी। सन्यासी ने कहा, यहां ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है। कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का रंग भी देखो, वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। ये कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्तमय मृत शरीर को ऐसी सुगमता से उठाकर कंधे पर रख लिया मानो वो एक घास का गट्ठर था और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से नीचे ही उतर जाया करता हूं, परंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके, अतएव एक दिन की राह छोड़कर 6 मास की राह चलेंगे। घाट यहां से थोड़ी ही दूर है और वहीं मेरी कुटी है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्ताचल को पयान करते हुए इस लोक को त्रसित नेत्रों से देखते जाते थे और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, उद्योग कर्मन की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी, उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावंतों के गाने सुने थे, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इस पद ने
उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया, वो बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की धुन में कोयल की कूक सरीखी मधुरता थी। सम्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कूल द्वय की रेत चंदन की चौकी सी दिखती थी। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्गीय सा जान पड़ने लगा। उस पर तैरने वाले जलजंतु ज्योतिर्मय आत्मा के सदृश दिख पड़ते थे, जो गाने का आनंद उठाकर मत्त से हो गए थे। जब गाना समाप्त हो गया, राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्तिपूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा है वो चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रशंसा करना सर्वथानुचित है, किंतु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में ना पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी ना करता। इसी अनुराग अवस्था में राजकुमार कितनी ही ऐसी बातें कह गया जो स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भावों का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं तुमको कुछ ठहरने को बोलूं, किंतु यदि जाने भी दूं तो सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकते। तुम्हारा रीवा पहुंचना दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखेट प्रिय हो वैसा मैं भी हूं। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कदाचित तुम भय से ना रुकते, किंतु शिकार के लालच से अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से कही थी वे बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थी और हार्दिक भाव उनसे प्रकट नहीं हुए थे। आजन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहां एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है, उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है। लेकिन ये महात्मा शिकार खेलते हैं, ये बड़ी अजीब बात है। कदाचित ये वेदांति हैं, ऐसे सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की प्रशंसा की जिसने उन्हें कुछ काल और साधु संग से लाभ उठाने का अवसर दिया। रात 10 बजे का समय था, घनी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले से ही प्रस्तुत था, बोला, इस अंधकार में शूकर अधिकतर मिलेंगे, किंतु ये पशु बड़े भयानक हैं। सन्यासी ने एक सोटा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ आए। मैं जब अकेला जाता हूं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, आज तो हम दो हैं। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेतों की टीलों को पार करते और झाड़ियों से अटकते चुपचाप चले जा रहे थे। एक ओर श्याम वर्ण नदी थी जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता हुआ दिखाई देता था और लहरें गान कर रही थी। दूसरी ओर घनघोर अंधकार जिसमें कभी कभी केवल खद्योतों के चमकने से एक क्षण स्थायी प्रकाश फैल जाता था। मालूम होता था कि वे भी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में कोई एक घंटा चलने के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार में इनके अतिरिक्त और भी कई वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत किया। दोनों एक पेड़ की ओर

राजकुमार ने अचंभित होकर पूछा, ये तो कोई बहुत ही बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, ये रईस नहीं है, एक बड़े मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, संसार का त्याग कर चुके हैं, सांसारिक वस्तुओं की ओर आंख नहीं उठाते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ये सब सामान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। इंद्रियों को वश में किए इन्हें बहुत दिन हुए, सहस्त्रों सीधे साधे मनुष्य उन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इनका कीजिए, यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं। ऐसे रंगे हुए सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है, इससे आपकी प्रजा का हित होगा तथा आपका नाम और यश फैलेगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, किंतु राजकुमारों के साथ आखेट करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त होता है, अतएव एक शिकार का पता और लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला, स्वामी जी, थकने का नाम न लीजिए, यदि मैं वर्षों आपकी सेवा में रहता तो और न जाने ऐसे कितने आखेट करना सीख जाता। दोनों फिर आगे बढ़े। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था, हाँ, सड़क कदाचित कच्ची ही थी। सड़क के दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियां थीं, किसी किसी वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर बाद दोनों शिकारियों ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहां की सड़कों, लालटेनों और अट्टालिकाओं से मालूम होता था कि कोई बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, ये सरकारी कचहरी है, यहां राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। उसकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी। यहां न्याय सुवर्ण और रत्नादिकों के मोल बिकता है। यहां की न्यायप्रियता द्रव्य पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों को पैरों तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई नहीं सुनता। यही बातें हो रही थी कि यकायक कोठे पर दो आदमी दिखलाई पड़े। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली है, मैं इसे भली भांति जानता हूं, यह कोई छोटा मामला नहीं है, इसमें एक सहस्त्र से कम पर मैं बातचीत नहीं करना चाहता। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की और शक्ति न रही, क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। यही जी चाहता था कि इस निर्दयी का भी वध कर दूं, किंतु सन्यासी जी ने रोका। बोले, आज इस शिकार का समय नहीं है, यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बतला दिए हैं, अब प्रातः काल होने में विलंब नहीं है, कुटी अभी भी यहां से 10 मील होगी, आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी में लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर ने हिला हिलाकर वृक्षों और पत्तों की निद्रा भंग करना प्रारंभ कर दिया था। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी को अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपा पूर्वक हाथ फेरा, आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजा पालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं। इन दीन पशुओं के वध करने में कोई बहादुरी नहीं, कोई साहस नहीं। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दोनों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ जीव हिंसा करता है, वो निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वो घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक सामान। तुम्हारे लिए ऐसे शिकारों की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुंचे। निशब्द पशुओं का वध न करके तुमको उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी से दूसरों का वध करती हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए। यही तुम्हारा धर्म है। जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेंगे।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहां आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। मां सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
3: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
1: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
3: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
1: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
3: बिल्कुल,
1: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
3: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
1: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
3: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद। देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो

0: ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
0: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
0: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
0: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
0: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
0: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। 80 घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के 80 घाट पर निवास कर रहे थे, तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
0: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के 80 घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और ये उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत। और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
1: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधी, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं। लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
0: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
1: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी।
0: बिल्कुल,
1: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
0: कौन सी कविता?
1: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
0: वाह,
1: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
0: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
1: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
0: जी हाँ, खैर, जब भारतेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था। लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
1: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
0: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी, तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव, हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
1: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं, उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
0: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
1: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
0: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
1: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
0: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
1: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
0: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
1: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की, उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
0: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
1: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
1: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
1: बिल्कुल ठीक
0: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
0: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
1: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध

0: और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
1: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
0: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष श्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
1: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
2: बिल्कुल,
1: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
0: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
1: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
1: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
1: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
0: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद इरशाद का पंजाबी सूफी गायन।

दरवेशां दी गल करन लगा, फकीरां दी गल करन लगा। एक फकीर रब दी जात नाल गल कर रहा है, रब नाल गल कर रहा है, रब नूं कहिंदा है

ये उन आशिकों की बात है, ये उन आशिकों की बात है जिन्होंने उस मालिक को अपना आत्मा सरेंडर किया। अब मैं उन आशिकों की बात कर रहा हूं जिन आशिकों ने अपने महबूब में से उसको देखा। सोनी मेहबान की गल याद आई, जरा गौर फरमायो, जब सोनी चिन्हा दे विच लगी बढ़न ओनू पता है, ये भी पता है कि आज कच्चा घड़ा ओने भी खुर जाना है, पर पीछे नहीं मुड़ी। घड़े नू लगी भन्न कड़ा, कहिंदा सोनिए ठहर जा, अज मैं कच्चा हाँ, आज मैं कच्चा हूं बिल्कुल, मैं खुद भी पानी में खर जाऊंगा और तुम्हें भी ले भरूंगा। सोनी कहिंदी वे घड़िया मैनू पता है तू कच्चा, जे तू कच्चा है इरादा पक्का रख, मैनू भी पता मैं डूब जाना है, पर घड़िया मेरा हौसला ना तोड़। सोनी कहिंदी के भन सुटा तेनू मिट्टी दे आ घड़िया, पै गयो मशूकां दी टाक उत्ते। पहले जब औरतें घड़ा उठाकर चलती थी तो घड़ा यहां होता था, ऐसे घड़ा लेकर जाती थी तो आज तो घड़े कहीं कहीं मिलते हैं। कड़ा कहंदा सोनिए रब दा वास्ता मैनू तोड़ी ना, मैनू पन्नी ना, कड़ा कित्थों बनया, केड़ी मिट्टी दा बनया, किने बनाया, जरा गौर फरमायो। कड़ा कहंदे पन सुट्टी मैनू चूर ना कर दी, असी बड़े बड़े दुख पाए, पहला मार कईयां दी खाधी असी, फिर हथ घूमे हार दे आए, ओने कुट कुट मेरा चूरा किता फिर छलनी नाल छनाए, ओने पानी पापा मेरा गारा किता फिर भिन्ने खूब बनाए, भिन्ने खूब बना के मैनू चक्कर ते धर लिया। वो चक्कर होता है ना जिसपे मट्टी को गारा कर उसको आकार दिया जाता है, वो चक्कर होता है।

ये उन सच्चे आशिकों की बात है जिन्होंने अपने महबूब के अंदर भी उसी को पाया। एक आजकल के आशिक हैं, जरा उनकी भी सुनना। मोहब्बत आज थोड़ी कमर्शियल हो गई है। मोहब्बत आज कमर्शियल क्यों हो गई, जरा गौर फरमाएं। मैंने कहा के दिल रूबा दिल रूबा दिल रूबा, मैंने कहा के दिल रूबा, वो बोली मेरे पास आ। मैंने

फकीर हो तो ऐसा, जिस फकीर ने अपने खुद ही अपनी मैं को खत्म कर दिया वही फकीर है। उस फकीर ने, हजरत साईं बाबा बुल्ले शाह साहब ने अपने से बढ़कर एक कुत्ते को रुतबा दिया कि ये मेरे से बढ़कर है, वफादार है ये। क्यों? जरा गौर हो।

अपने आप को कहा कि ए भुल्ले, तुझसे तो ये कुकर ही अच्छे हैं, तुझसे ये कुकर अच्छे हैं। क्यों? राती जागण शेख सदावण, राती जागण कुत्ते दे थूते, राती जागण शेख सदावण।

अभी आप मोहम्मद इरशाद का पंजाबी सूफी गायन सुन रहे थे। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।